0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मुलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाले

0: की बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to his meeting with his Italian counterpart Giorgia Meloni later today. He expressed hope that the talks between them will focus on strengthening India-Italy relations. In a social media post, Mr. Modi said that upon landing in Rome, he had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner, followed by a visit to the iconic Colosseum. He said both leaders exchanged perspectives on a wide range of subjects. The Prime Minister added that today's talks will continue their conversation on boosting India-Italy friendship. Meanwhile, PM Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, and President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus specially on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, or IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025 to 2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. India-Italy ties have expanded with unprecedented momentum in recent years and have now reached a decisive stage. In a joint

करके इस खूबसूरत पल को बनाइए थोड़ा और खास, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना, आपके जीवन से जुड़ा और आपके दिल के बेहद करीब कार्यक्रम घर आंगन। मैं हूँ श्रुति पुरी और अगले 50 मिनट तक हम करेंगे बातें जिंदगी की, घर की, परिवार की, रिश्तों की, सेहत की, समाज की और तमाम उन मुद्दों की जो कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन का हिस्सा है। तो जहाँ भी हैं आप, घर पर, ऑफिस में, सफर में या फिर अपने दिन की किसी भागदौड़ के बीच, तो थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकालते हुए बस जुड़े रहिए हमारे साथ। आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, BRM 810 किलोहर्ट्ज पर भी हमारा आपका साथ बना रहेगा, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर के श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं AIR न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा साथ रहेगा दोपहर 1 बजे तक। आपके सुझाव, सवाल और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है, इसलिए हमें लिख भेजिए fmgoldg@gmail.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर नई सोच, नई जानकारी और सकारात्मक बातचीत से, क्योंकि बातें वही जो जुड़ी हों आपकी जिंदगी से। लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे हैं फिल्म तकदीर में।

श्रोताओं, अब समय है सुविचार का और आज का सुविचार है सुंदर हे विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। कवि सुमित्रा नंदन पंत की ये पंक्तियाँ हमेशा मन को छू जाती हैं। इसका सरल अर्थ है पक्षी सुंदर है, फूल भी सुंदर हैं, लेकिन मनुष्य इन सबसे अधिक सुंदर और श्रेष्ठ है, क्योंकि उसे विचार संवेदना सृजन और मानवता का अनमोल वरदान मिला है। और आप सोच रहे होंगे कि हमने आज इस खूबसूरत विचार से शुरुआत क्यों की है, तो बता दें कि आज हिंदी साहित्य के प्रकृति और सौंदर्य के अप्रतिम कवि सुमित्रा नंदन पंत की जयंती है। पंत जी ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौंदर्य को जितनी खूबसूरती से उकेरा, उतना ही उन्होंने मानव जीवन के मूल्यों और संवेदनाओं को भी महत्व दिया। उनकी पंक्तियाँ हमें बहुत सहज तरीके से ये समझाती हैं कि मानव जीवन अपने आप में एक सौभाग्य है और इसकी सार्थकता भी तभी है जब हम अपने भीतर संवेदनशीलता करुणा और सकारात्मकता को जीवित रखें। और श्रोताओं, आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल जी की पुण्यतिथि भी है। हम उनको सादर नमन करते हैं। आपका जन्म अविभाजित भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी के सिलहट जिले में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आप प्रसिद्ध राष्ट्रवादी टिकड़ी लाल बाल पाल के अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ थे। क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल ने वर्ष 1905 के बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी और 1907 के वंदे मातरम राजद्रोह मामले में महर्षि अरविंद घोष के खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार करने पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 महीने के कड़े कारावास की सजा सुनाई थी। बिपिन चंद्र पाल एक प्रखर विचारक, प्रख्यात वक्ता और ओजस्वी पत्रकार थे। उन्होंने न्यू इंडिया, वंदे भारत, परिदर्शक और स्वराज जैसे प्रभावशाली समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का संपादन और प्रकाशन किया। सामाजिक सुधारों के पक्ष में आवाज उठाई, रूढ़िवादी जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह करके समाज के सामने प्रगतिशील मिसाल प्रस्तुत की। द सोल ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रवाद और नेशनलिटी एंड एम्पायर जैसी कालजयी पुस्तकों की रचना भी आपने ही की। बिपिन चंद्र पाल की बहुचर्चित आत्मकथा मेमोरीज ऑफ माई लाइफ इन टाइम्स भारत के तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को समझने का एक अत्यंत प्रमाणिक दस्तावेज है और हम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल को उनकी पुण्यतिथि पर आज के दिन शत शत नमन करते हैं। गुड्डी फिल्म में अभी आप वाणी जयराम को सुन रहे हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, प्रकृति ने हमें अनगिनत अनमोल उपहार दिए हैं। नदियाँ, पर्वत, पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल, लेकिन इन सब के बीच एक नन्हा सा जीव ऐसा भी है जो आकार में भले ही छोटा हो लेकिन प्रकृति के संतुलन और हमारे जीवन में उसकी भूमिका बेहद बड़ी है, और वो है मधुमक्खी। फूलों से रस लेकर शहद बनाने वाली मधुमक्खियाँ केवल मिठास ही नहीं खोलती बल्कि फसलों के परागण के महत्वपूर्ण योगदान देकर हमारी खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को भी बनाए रखती हैं। इन्हीं नन्हीं मेहनतकश जीवों के महत्व को रेखांकित करके और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और रासायनिक कीटनाशकों का अधिक उपयोग मधुमक्खियों के अस्तित्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में प्रकृति को संतुलित और सुरक्षित रखना है तो इन नन्हे परागणकर्ताओं की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने में अपना छोटा सा योगदान अवश्य देंगे और प्रकृति की इस मधुर गूंज को सुरक्षित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है ना?

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

शुरुआत से लेकर रात के अंतिम पहर तक हमारा पूरा जीवन ऊर्जा पर निर्भर है। रसोई में चूल्हा जलाने के लिए एलपीजी, यातायात के लिए डीजल पेट्रोल, घरों और उद्योगों के लिए बिजली और शहरी जीवन में तेजी से बढ़ता पीएनजी का उपयोग। ऊर्जा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। सुविधा के इस निरंतर उपयोग के बीच हम ये भूल जाते हैं कि ऊर्जा संसाधन असीमित नहीं है, वो सीमित है। आज वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या, तेज रफ्तार जीवन शैली और औद्योगिक विकास ने ऊर्जा खपत को कई गुना बढ़ा दिया है। पेट्रोलियम पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता न केवल आर्थिक चुनौती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग अब विकल्प नहीं आवश्यकता है। उदाहरण के लिए थोड़ी सी दूरी के लिए जाने पर वाहन की जगह पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना, कार पूलिंग अपनाना और रसोई में गैस का अनावश्यक उपयोग न करना और जरूरत के अनुसार ही ईंधन का उपभोग करना, आज के समय में केवल ऊर्जा संरक्षण ही नहीं बल्कि ऊर्जा संचयन का भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। ये सौर ऊर्जा का संग्रह हो, बैटरी स्टोरेज हो या घरेलू स्तर पर ईंधन की अनावश्यक बर्बादी रोकना, हर प्रयास आने वाले कल को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कदम है। ऊर्जा केवल सुविधाओं का माध्यम नहीं है बल्कि विकास और भविष्य की आधारशिला भी है। आज यदि हम ऊर्जा को बचाना और संचित करना सीख लें तो आने वाली पीढ़ियों को एक अधिक सुरक्षित और संतुलित दुनिया हम दे सकते हैं। दादा फिल्म में अभी आप हेमलता, मोहम्मद रफी, शैलेंद्र सिंह और दिलराज कौर को सुन रहे हैं।

0: श्रोताओं, कुछ भी सुनने से पहले आइए सुनते हैं एक संदेश।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

बताऊं, हम आकाशवाणी के 90 वर्ष का जश्न मना रहे हैं और आकाशवाणी में बच्चों के कार्यक्रम का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। 1930 के दशक में अपनी शुरुआत से ही इसने बच्चों के मनोरंजक और शिक्षा और सर्वांगीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब 1936 में भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया, तभी से बच्चों के लिए कहानियां और नाटकों का प्रसारण शुरू हो गया था। उस समय का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना था। 1940-50 के दशक में बच्चों के कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय हुए। विभिन्न केंद्रों जैसे दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता से बाल सभा और खिलौना घर जैसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए रेडियो प्रस्तोता को अंकल, दीदी या दादा जैसे आत्मीय संबोधन दिए जाते थे। बच्चों को पत्र लिखने और अपने कार्यक्रम में शामिल करने की अनूठी परंपरा भी शुरू हुई। 1960 से 1980 का दशक वो दौर था जब बच्चों ने रेडियो नाटकों, कविताओं के पाठ और संगीत कार्यक्रमों में खुद ब खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस 14 नवंबर के मौके पर विशेष कार्यक्रमों का निर्माण होता था जिसे पूरा देश सुनता था। विविध भारतीय और क्षेत्रीय प्रसारण पर भी बच्चों के लिए नन्हे मुन्ने, बाल गोपाल और बाल जगत जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम आए। वहीं क्षेत्रीय केंद्रों जैसे दिल्ली, शिमला और जयपुर से स्थानीय बोलियों में भी बच्चों के लोकगीत और कहानियां प्रसारित की गईं, जिससे ये गांव-गांव तक भी पहुंच पाया। आधुनिक युग और डिजिटल मंच यानी 2000 के बाद टेलीविजन और इंटरनेट के युग में भी आकाशवाणी ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। अब बाल कार्यक्रम एफएम चैनलों और क्षेत्रीय केंद्रों दोनों के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों में अब पर्यावरण संरक्षण, सामान्य ज्ञान और नई शिक्षा नीति से जुड़े विषय शामिल होते हैं। तो आज भी जो ये बच्चों के कार्यक्रम हैं, ये बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को पंख देने का काम कर रहे हैं।

0: मास्टर नटवरलाल। इस फिल्म में अभी आप अमिताभ बच्चन और मास्टर रवि को सुन रहे हैं।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: dito, Bulo, no?
1: Batatang. नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा

की ये बात है।

लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर,

सदाओं कहा जाता है कि अगर भारत एक रंगमंच है तो दिल्ली उसका सबसे जीवंत मंच है, जहां इतिहास भी सांस लेता है और आधुनिकता भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाती है। राजधानी दिल्ली केवल एक शहर नहीं बल्कि अनेक संस्कृतियों, परंपराओं, भाषाओं, स्वादों और अनुभवों का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि दिल्ली को अक्सर दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली का इतिहास अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। इसे इंद्रप्रस्थ के रूप में भी जाना जाता था और दिल्ली ने कई राजवंशों जैसे तोमर, चौहान, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश शासन को आते जाते देखा है। शायद यही कारण है कि दिल्ली को अक्सर सात शहरों का नगर भी कहा जाता है। लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, पुराना किला आज भी इस गौरवशाली विरासत के साक्षी हैं। इनमें से कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा और लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। दिल्ली भारत का राजनीतिक केंद्र होने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी है। यहाँ देश की संसद, सर्वोच्च न्यायालय और प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क है और विश्व के बड़े मेट्रो नेटवर्क्स में भी शामिल है।

स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान दिल्ली को विशेष पहचान देते हैं। उच्च शिक्षा में दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हैं। दिल्ली के खान पान, आहा, वो तो उसकी आत्मा है। यहाँ का स्ट्रीट फूड दुनिया भर में मशहूर है। चाट, गोलगप्पा, पराठे, छोले भटूरे, दही भल्ला, कबाब और बटर चिकन के नाम आते ही दिल्ली की याद आ जाती है। चांदनी चौक, पराठे वाली गली का स्वाद और पुरानी दिल्ली के व्यंजनों की खुशबू दिल्ली को और भी खास बनाती है। दर्शनीय स्थलों की बात करें तो दिल्ली में इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, कैनॉट प्लेस और दिल्ली हाट यहाँ आने वालों को अलग अलग अनुभव प्रदान करते हैं। दिल्ली का जीवन अपने आप में बेहद मनमोहक और बहुरंगी है। सुबह की चाय से लेकर देर रात तक चलने वाली चहल पहल और लोगों का जीवंत स्वभाव सब मिलकर दिल्ली को खास बनाते हैं। यहाँ हर राज्य की संस्कृति को स्पर्श मिलता है, इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहना गलत नहीं होगा। शायद इसीलिए दिल्ली को केवल देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है और शायद यही है दिल्ली का दिल्ली नामा, एक ऐसा शहर जो हर बार कुछ नया सुनाता है, दिखाता है और हर एक के दिल में जगह बना लेता है। तीन बहुरानियां इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले को सुन रहे हैं।

श्रोताओं, अब बात करते हैं आस पड़ोस की। एक वक्त था जब पड़ोसी परिवार का हिस्सा माना जाता था, घर की चाबी भी उनके पास रहती थी और खुशियों से लेकर मुश्किलों तक हर बात में उनकी मौजूदगी होती ही थी। लेकिन आज ऊंची दीवारें और व्यस्त जीवन शैली ने इस रिश्ते को थोड़ा सा सीमित कर दिया है। फिर भी सच्चाई यही है कि सबसे पहले मदद के लिए जो दरवाजा खुलता है वो पड़ोसी का होता है। जरा सोचिए, घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, बच्चों को थोड़ी देर के लिए किसी के पास छोड़ना हो या घर की छोटी मोटी जरूरत हो, ऐसे में सबसे पहले कौन याद आता है? वो होता है आपका पड़ोसी। सुबह की एक मुस्कान,

सुरक्षा का एक एहसास, घर के आसपास का ध्यान रखना, एक दूसरे की अनुपस्थिति में घर पर नजर रखना, ये सब बातें बिना कहे ही एक मजबूत भरोसा बना देती हैं। वही हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके सुख दुख के साथ जरूर खड़े हों, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करें और उन्हें एक स्पेस दें, प्राइवेसी का सम्मान करें उनकी। छोटे छोटे व्यवहार जैसे त्योहारों पर मिठाई बांटना, हालचाल पूछना या बच्चों के साथ खेलने देना, बच्चों को साथ में खेलने देना, ये सब

सदा हल्की हल्की मुस्कान, कुछ मीठी सी बातें और दिल में ठहरती हुई ये गर्माहट, बस यही तो है हमारे घर आंगन की पहचान। तो आज की ये महफिल यहीं सिमटती है, लेकिन इसके एहसास आपके साथ चलते रहें, यही तो हमारी ख्वाहिश है। मैं आपकी अपनी होस्ट श्रुतिपुरी आपसे इजाजत चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा न्योता, आपके अपने दिल की बातें, अपने किस्से, अपने सुझाव हमें जरूर लिख भेजिए हमारे fmgoldga@gmail.com पर, क्योंकि आपका साथ ही तो इस घर आंगन को सच में घर बनाता है। तो अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों, नए एहसासों और उसी अपनेपन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और सुनिए ये गीत प्यारा सा कारवां फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मैं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को आईना भी दिखाती है। हम बात कर रहे हैं 1968 में आई फिल्म इज्जत की। ये फिल्म अपने दौर की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें प्यार, सामाजिक भेदभाव और इंसानियत के भावनात्मक रंग बहुत खूबसूरती से दिखाए गए थे। आज की फिल्म इज्जत में हम बात करेंगे फिल्म की कहानी, कलाकारों और गीत संगीत और उससे जुड़े दिलचस्प किस्सों की।

दोस्तों, फिल्म इज्जत का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक टी प्रकाश राव ने। फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी धर्मेंद्र, तनुजा और जयललिता ने। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतों की रचना की थी साहिद लुधियानवी साहब ने। यही वजह थी कि लक्ष्मी प्यारे और साहिद की जोड़ी से फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ। आपको ये भी बता दें कि फिल्म दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता जयललिता की एकमात्र हिंदी फिल्म होने के लिए जानी जाती है। उन पर फिल्माया गीत भी काफी प्रसिद्ध रहा था।

सा फिल्म का सबसे मशहूर गीत था ये दिल तुम बिन लगता नहीं, जिसे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी। ये गीत आज भी रेडियो श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। इसके अलावा फिल्म के गीतों में साहिर लुधियानवी की शायरी दिल को छू लेती है। गीतों में एक तरफ जहां शरारत, नोकझोंक और प्यार के एहसास है, वहीं दूसरी तरफ दर्द और संवेदना का एहसास भी मिलता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अर्चना गोयल, और हमारी आज की फिल्म है इज्जत। दोस्तों, फिल्म की कहानी समाज में ऊंच नीच और इंसान की असली इज्जत के अर्थ को समझाती है। धर्मेंद्र ने फिल्म में एक आदिवासी गरीब युवक का किरदार निभाया। वो सीधा साधा, ईमानदार और दिल का साफ इंसान होता है, लेकिन समाज उसे उसकी जाति और हैसियत की वजह से कमतर समझता है। दूसरी तरफ तनुजा का किरदार पढ़ा लिखा और सभ्य परिवार से जुड़ा होता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार पनपता है, लेकिन समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता। फिल्म यही एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या इंसान की पहचान उसकी जाति और हैसियत से होती है या उसके चरित्र और इंसानियत से। कहानी आगे बढ़ती है और कई भावनात्मक मोड़ आते हैं। गलत फहमियां, संघर्ष और समाज की कठोर सोच दोनों प्रेमियों की राह मुश्किल बना देती है, लेकिन अंत में फिल्म ये संदेश देती है कि सच्ची इज्जत इंसान की कर्मों से होती है।

इस खूबसूरत गीत के बाद अब बढ़ते हैं आपके मेल्स की तरफ। ये मेल हमें मिला है सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा का अनारकली बाजार जगराओं से, और इनको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। और अब बढ़ते हैं दूसरे मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है गांव खाड़ी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने। आप हैं मांगेराम सतौड़ चौधरी बास हरियाणा से, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्य साहू, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रियांशी चौधरी बास हिसार से, और आप हैं गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। पंकज शर्मा जी हमें अपना मैसेज भेज रहे हैं मॉडल टाउन करनाल से, आपके साथ सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, प्रजापति और प्रताप, प्रतिभा शर्मा। आप हैं विरमगांव जंक्शन से अजीत भावसार, प्रमिला बेन भावसार, छत्तीसगढ़ पराली से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, और आप हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगवेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफ रीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलुफर फातिमा और उनके परिवार के सभी लोग। वर्किंग वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक। आप हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता पीपरिया से, और संदीप मक्कड़ जी हमें भेज रहे हैं अपना मैसेज जालंधर से, आपके साथ ज्योति मक्कड़, मन्नत, भारत मक्कड़ और कमल साहनी पिंगा वाले चौक से। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। आप हैं फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी तिवांशी, वाणी खेड़ा, आरबीजेड़ खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी लोग। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आप हैं सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से पूनम गगनेजा और सुरेश गगनेजा।

बबलेश पवार जी गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से अपना मैसेज भेज रहे हैं और नलेश्वर नगर नरविल महारा से पीएन नवाडकर निर्मला और विशाल कबीर रेडियो श्रोता संघ से देव शंकर तामुरिया जयदेव तामुरिया तुषार देव और मास्टर अल कबीर भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा और दत्रेगी से तो आप सबके मैसेज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहानी सुनने के साथ साथ मैसेज भी कर रहे हैं और बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेंद्र का आदिवासी किरदार उस समय काफी अलग माना गया था। जयललिता बाद में दक्षिण भारत की बहुत बड़ी अभिनेत्री और फिर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। फिल्म की शूटिंग प्राकृतिक स्थानों में की गई थी जिससे पर्दे पर एक अलग ही सौंदर्य दिखाई देता था। उस दौर में सामाजिक भेदभाव पर आधारित फिल्मों की संख्या कम थी इसलिए इज्जत को एक संवेदनशील फिल्म माना गया। धर्मेंद्र को अक्सर दर्शकों ने रोमांटिक और एक्शन हीरो के रूप में देखा था लेकिन इस फिल्म में उन्होंने आदिवासी युवक की मासूमियत और दर्द को बेहद शानदार तरीके से पर्दे पर निभाया। फिल्म देखने वाले दर्शकों ने उनके अभिनय की खूब तारीफ

दोस्तों, इज्जत सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इंसानियत और बराबरी का संदेश देने वाली कहानी है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़े, पैसे या जाति से नहीं बल्कि उसके दिल और व्यवहार से होती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ अब मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और यादगार कहानी के साथ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण दीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल गलबात करनगे। रक्षा खोज ते विकास संगठन DRDO ने अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रसीजन गाइडड मिसाइल की सफलतापूर्वक अंतम विकास परख की है। पंजाब पुलिस ने पंजाब अते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दुबई आधारित एक अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पंजाब समेत देश के बहुत सारे हिस्सों में अत की गर्मी जारी है। IPL क्रिकेट में अज कोलकाता में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के पंजे के आखिरी पड़ा से इटली पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वह इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल अपनी मुलाकात लिए उत्सुक ने। उन्होंने उम्मीद प्रगटाई कि दोहां विचकार मुख तौर पर चर्चा भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने से उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी नाल रात के खाने से मिलने का मौका मिला, जिस तों बाद उन्होंने मशहूर कैलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोवां नेतावां ने कई मुद्दों पर विचार सांझे किए हैं। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने दौरे का ध्यान भारत और इटली विचकार सहयोग को होर मजबूत करने पर होगा। गलबात खास तौर पर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि 2025 तो 2029 की म्याद लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की भी समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह संयुक्त राष्ट्र के खुराक और खेतीबाड़ी संगठन के हैडक्वार्टर का भी दौरा करेंगे। इस दौरान एक होर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इटली में कल शाम रोम में कोई निघे स्वागत लिए भारतीय भाईचारे का धन्यवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रति उन्होंने डूंघा प्यार और भारत इटली संबंधों को मजबूत करने प्रति उन्होंने वचनबद्धता सचमुच श्लाघायोग है। उन्होंने कहा कि भारतीय भाईचारा दुनिया भर में देश को माण दवा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज सोल में दक्षिणी कोरिया के रक्षा मंत्री अहन क्यूबाक नाल गलबात की। दोहां आगुओं ने क्षेत्रीय शांति स्थिरता और तकनीकी सहयोग प्रति अपनी सांझी वचनबद्धता प्रगट की है। उन्होंने भारत दक्षिणी कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को होर मजबूत करने बारे चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि मीटिंग दौरान दोहां देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को उत्साहित करने समझौतों का आदान प्रदान किया। इस समझौते से भारत के नैशनल डिफेंस कॉलेज कोरिया नैशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सदाचार एक दीपक वांग है जो ना सिर्फ किसी व्यक्ति नूं सगों पूरे समाज नूं रोशन करता है। सोशल मीडिया से एक संस्कृत शुभाष्टम साझा करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस आदर्श नूं अपना के देश के लोग अज पूरी तरह संजम ताकत ते समर्पण नाल राष्ट्र निर्माण विच लगे हुए ने। प्रधानमंत्री ने कहा है कि करना चाहिए ते की नहीं इसका निर्धारण किसी की अपनी राय या आवेग विच आ के अचानक नहीं किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि यह धर्म ग्रंथों में वर्णित एक स्थापित मापदंड से आधारित होना चाहिए जो आचरण को सही दिशा से अनुशासन प्रदान करता है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस नाल होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेटों नाल हरा दिया है। अंत में चुनावी खबरें एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल मुलाकात करेंगे। रक्षा खोज ते विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैंड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रसीजन गाइडेड मिसाइल की सफलतापूर्वक अंतम विकास प्रगति की है। पंजाब पुलिस ने पंजाब अते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले दुबई आधारित एक अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पंजाब समेत देश के बहुत सारे हिस्सों में अत्यधिक गर्मी जारी है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता में मुंबई इंडियंस का मुकाबला

आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फरोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मिलोनी से बातचीत करेंगे। वजीर आजम मोदी और जॉर्जिया मिलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकतदारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिसाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वसी हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। और IPL क्रिकेट में आज ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो आज इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की इस मीटिंग में भारत इटली ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने के बाद उन्हें डिनर पर वजीर आजम मिलोनी से मुलाकात करने और तारीखी कोलेजियम जाने का मौका मिला। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मौजूआत पर अपना अपना नुक्ता नजर पेश किया। वजीर आजम ने मजीद कहा कि आज की बातचीत में भारत इटली दोस्ती को फरोग देने पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान वजीर आजम मोदी इटली की अपनी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी और सदर सर्गियो मटरेला के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आजम मोदी के दौरे के दौरान भारत और इटली के दरमियान तआवुन को फरोग देने, खास तौर से भारत मगरबी एशिया यूरोप इकतसादी कॉरिडोर पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मुश्तरका कलीदी अमली मंसूबे 2025 से 2029 तक का भी जायजा लिया जाएगा। जनाब मोदी खुराक और ज़राअत की तंजीम के सदर दफ्तर का भी दौरा करेंगे और कसीर जहती निज़ाम और पूरी दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अहद को मजीद मुस्तहकम करेंगे। भारत और इटली के दरमियान ताल्लुकात में गुज़श्ता बरसों में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है और अब ये एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हम मनसब जॉर्जिया मिलोनी की जानिब से तहरीर करदा एक मुश्तरका मजमून में दोनों रहनुमाओं ने इस बात को उजागर किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते खुशगवार दोस्ती से खुसूसी

0: में इजाफा हो सकता है। राजस्थान के ज्यादातर जिले इस वक्त शदीद गर्मी की गिरफ्त में हैं। महकमा मौसमियात ने शदीद गर्मी के सबब आज दो जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने इस हफ्ते के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी और वसी हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद गर्मी की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में आइंदा चार रोज के दौरान गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान असम, मेघालय, केरलम, माहे, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार जजायर में कल तक शदीद बारिश हो सकती है। IPL क्रिकेट में कल रात जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी के शानदार 93 रन की इनिंग्स की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत इटली इक्तिसादी इश्तराक को फरोग देने के लिए आज रोम में इटली की अपनी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने भारत इटली कलीदी शराकतदारी के लिए आइंदा का लाए अमल नुमाया किया है। एक मुश्तरका मजमून में उन्होंने मुख्तलिफ इक्तिसादी इकदामात को उजागर किया। दिफाई तहकीक की भारतीय तंजीम DRDO ने ठीक निशाने पर वार करने वाले ड्रोन मिसाइल V3 का कामयाब तजुर्बा किया। सुप्रीम कोर्ट ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी के अमल के सिलसिले में मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मुल्क के शिमाली और वस्ती हिस्सों में शदीद गर्मी जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज रहे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the Midday News.

0: authorities. The country has recorded 543 suspected cases and 32 confirmed infections, while neighboring Uganda has reported 2 confirmed cases. On to sports. In IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Mumbai Indians at the iconic Eden Gardens in Kolkata. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur last night, keeping their playoff hopes alive. Rajasthan Royals overhauled the massive target of 221 runs with 5 balls to spare. Benchmark domestic equity indices were trading marginally lower in the afternoon session. The Sensex dropped 101 points to 75,100, while the Nifty dipped 24 points to 23,594 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome in a short while from now to boost economic cooperation. Prime Minister Modi and Giorgia Meloni outline roadmap for India-Italy strategic partnership, highlight several economic initiatives in a joint article. DRDO completes trials of drone-launched unmanned precision-guided missile. Defence Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging Centre's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, hosts Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत

0: लिए साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGF-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए

एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों

0: तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ।
1: मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत अभी आपने रूप कुमार राठौर को सुना, फिल्म थी गुमराह। इससे पहले आपने सुना आशा भोसले को, फिल्म थी जिंदगी एक जुआ। इन दोनों नगमों के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। अब सुनिए जनाब जावेद उर्फी का तहरीर करदा ड्रामा, जिसका उन्वान है शादी का इश्तेहार। पेशकश सरफराज अहमद की है और हिस्सा लेने वाले फनकार हैं चांद नारायण सक्सेना, शारदा गुप्ता, मोहम्मद अयूब, पोर्शिया मुखर्जी और कमला कुमारी चोपड़ा।

0: शीत लखिए।
1: माफ कीजिएगा, रमजान का महीना है, रोजे की हालत है, जरा आग छपक गई थी, लम्हे भर के लिए ऊं गया।
0: जी जी, रमजान की वजह से और फिर पहला रोजा है ना, वो झपकी आ ही जाती है।
1: ना चीज को रमजान खां, बल मोहर्रम खां, बल बकर ईदी खां, बल ईदी खां कहते हैं। अब आई कब्रिस्तान नाचीज का बारा बंकी है, मगर 70 बरस से नाचीज कश्मीरी मोहल्ले में मुकिम है।
0: बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मोहतरम।
1: माफ कीजिए मोहतरम।

0: अरे खुशी हुई आपसे मिलकर मोहतरम।
1: माफ कीजिए मोहतरम, मैं अभी तक शर्मिंदा हूँ। मैं जरा ऊँग गया था, पलक झपक गई थी।
0: जी जी, जी, जी। कोई बात नहीं मोहतरम। देखिए मुझे खुद अफसोस है, आप मेरे कदम की आहट से जाग उठे, मैं आपके आराम में खलल अंदाज हुआ।
1: अपनी तो साहब नींद ही ऐसी है, जरा मच्छर बोले, जरा मक्खी उड़े, जरा खटमल चले, आँख खुल जाती है, चूटी का चलना भी गवारा नहीं जनाब।
0: जी जी, ज़ईफ़ी में ऐसा ही होता है।
1: कोई ऐसी ज़ईफ़ी का आलम हरगिज़ नहीं है साहब। हाँ, और वजूहात से भी नींद नहीं आती। हाँ, कई बार हकीम नब्बाज मरहूमशन नवस दिखा चुका हूँ आपकी तारीफ बरखुरदार।
0: नाचीज को मिर्जा महमूद बेग कहते हैं।
1: आदाब बजा लाता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। मैं तो समझा था आप मिर्जा महमूद साहब के पोते हैं, इसीलिए गुफ्तगू में तकल्लुफ का लिहाज ना रहा, अनजाने में जबान से बरखुरदार निकल गया। आप तो मेरे मखदूम मोहतरम अली हैं।
0: ओ, कैसी बातें करते हैं आप है? इरशाद फरमाइए।
1: साहब इरशाद तो आप फरमाएंगे, मैं तो गुजारिश करूंगा।
0: देखिए आप शर्मिंदा कर रहे हैं।
1: मैं आपका आदिम हूँ, नाचीज हूँ। गुजारिश है, आपने जो इश्तहार दिया खबरनामे में,
0: जी, जी।
1: जरूरत है रिश्ते की एक खूबरू, सेहतमंद पढ़े लिखे कमाते लड़के की। इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ।
0: बड़ा करम है आपका।
1: मोहतरम जरा तफसील से लड़की के बारे में बताइए। इश्तहार बहुत मुख्तसर है, उम्र 21 साल, खूबसूरत और सेहतमंद, तालीम याफ्ता, खानदान। भाई इससे सब बात समझ में नहीं आती, कहाँ तक लड़की की तालीम है। वैसे तो लोग कुछ भी पढ़ी लिखी लड़की को तालीम याफ्ता कहते हैं।
0: माफ कीजिएगा मोहतरम
1: जी,
0: लड़की एमए पास है।
1: हाँ?
0: आप चाहे तो सनद देख
1: सकते। मैं सनद देख कर क्या करूँगा, तालीम की बात तो बस मैंने यूं ही कह दी। बेहतर होगा अगर आप लड़की को दिखा दें।
0: आप लड़के के बारे में कुछ बताइए।
1: मोहतरम लड़के के बारे में क्या बताऊँ, अरे बताना आसान नहीं। एक खूबी हो तो बताऊँ, हजारों खूबियाँ हैं। अच्छे मोहतरम खानदान का है, खूब रूह है, सेहतमंद है, दुनिया देखे हुए आए, तालीम भी है, दौलत भी है, और क्या चाहिए। सारे लखनऊ में इससे अच्छा खानदान ना होगा साहब। जहांगीर समझिए, आपकी लड़की मलका नूर जहां बनकर रहेगी। आप लोग बेटी को देखकर फूले ना समाएंगे, और खुशी में आप साहेबान की उम्र बढ़ेगी।
0: जी हाँ, जी हाँ, शुक्रिया। देखिए मेरी लड़की इकलौती है, मैं ऐसा ही रिश्ता चाहता हूँ।
1: ऐसा ही रिश्ता आपको मिल रहा है मोहतरम।
0: जनाब शुक्रिया जो आपने तकलीफ की।
1: फिर जरा वो मोहतरम आप अपनी लड़की को बुलाइए, लड़की पसंद आ जाए तो फिर बात पक्की कर लूंगा।
0: मैं भी यही चाहता हूँ हुजूर मोहतरम, कि माहे मुबारक में बात पक्की हो जाए और ईद में बारात चढ़े।
1: ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मगर खुदा के वास्ते मोहतरम आप मुझे हुजूर ना कहिए, मैं शर्म से पानी पानी हो गया, और आप मेरे मोहतरम हैं।
0: क्या फरमाते हैं आप, मैं आपकी बात से खुश शर्मिंदा हुआ।
1: मोहतरम मैं ठीक अर्ज कर रहा हूँ, वक्त बर्बाद करने से क्या हासिल। लड़की को बुलाइए, जरा देख तो लूं। वैसे तो माशाल्लाह आपका चेहरा भी काफी खिला हुआ है, साफ रंग, बड़ी बड़ी आंखें। लड़की अगर आप पर पड़ी होगी तो अच्छी होगी, और अगर अपनी वालिदा मोहतरमा पर, तो मैंने वालिदा माजिदा साहिबा को तो देखा ही नहीं।
0: इंशाल्लाह लड़की आपको पसंद आएगी, बस जरा नजर करम से देखिएगा। लड़की की शादी में एक हज का सवाब मिलता है।
1: तो बुलाइए ना, आखिर हज ही क्या है जो ताखीर कर रहे हैं साहब। है? उजर की कोई वजह नहीं, इतना अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। हाँ, और साहब अगर कुछ पर्दे वर्दे का झगड़ा है तो बालाए ठाकरा किए इस फरसूदा रसम को। हाँ, हाँ, हाँ। आपकी लड़की पढ़ी लिखी है तो भला पर्दा क्या करती होगी, और करती हो तो मुझसे क्या पर्दा। बस आप जल्दी से बुलाइए,

0: शौ है, जिस हाल में है उसी हाल में देखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है रंग रोगन के बाद नहीं। हाँ, रंग और रोगन तो दूसरों के लिए है, फिर साहब हजार की एक बात, शरे में शर्म क्या।
1: आप कहते हैं तो मैं अभी बुला लेता हूँ, आपसे क्या पर्दा।
0: हाँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ, लड़के को चाहे लड़की ना पसंद आए मगर अपनी खूबियों की वजह से लड़की को लड़का जरूर पसंद आएगा। आ, आ, आ,
1: आ। अभी लेकर आता हूँ। वैसे जनाब, हमारे यहाँ जो माँ बाप की मर्जी वही लड़की की मर्जी। हम शरीफ अभी इतने तरक्की याफ्ता नहीं हुए हैं कि लड़की लड़के को पसंद करे। हमारे यहाँ ये रस्म नहीं मानी जाती।
0: जी साहब, आप बातों में ही लगे रहेंगे या असल मतलब पर आएंगे? हाँ, आप जल्दी से लड़की को लेकर आइए, उसी के बाद ही बात होगी।
1: जी ठीक है, बेहतर बेहतर।
2: अरे बेगम, बेगम, अरे सुनती हो, बड़े मियाँ कहते हैं लड़का बहुत अच्छा है माशाल्लाह।
3: अब तो ऐसा करिए, लड़के को अफ्तार पर बुला लीजिए, खाने के लिए ना कहिएगा, मगर हम रूखी सूखी के नाम से बेहद तकल्लुफ से दस्तरखान बिछा लेंगे।
2: हाँ, बेहतर है, कल ही इंशाल्लाह अफ्तार पर बुला लेते हैं। मगर हाँ, बड़े मियाँ सकिया को देखना चाहते हैं। पसंद करने का पूरा अख्तियार है शायद उन्हें, है? मालूम होता है कोई खास आदमी है।
3: आए होंगे, मगर नाम नाम वाम बहुत खराब है।
2: अरे बेगम, नाम वाम से क्या होता है, मैं समझता हूँ क्या अर्ज है। भाई शरीफ ज़ादे हैं, उजले पोश, नाना दादा के बराबर
3: जी।
2: दिखाने में क्या हर्ज है, वैसे जकिया भी तो पर्दा बराए नाम ही करती है, है? अब जैसा कहिए।
3: मैं भी नहीं समझती कि कोई हर्ज है। अच्छा दिखा दीजिए, अल्लाह करे पसंद आ जाए।
2: महजा अंदर क्या गया, बड़े मियाँ फिर से बेखबर हो गए। कब से जगा रहा हूँ, चुटकी बजाई, ताली बजाई, पैर पटका, मगर खराटा खराखर छोड़े जा रहे।
3: अब्बी, बड़े मियाँ पर तो रोजा सवार है, इफ्तार से पहले शायद ही उठे, जब तक तुम मरा ही समझिए।
2: मुझे क्या बदतमीजी है, इतना भी ख्याल नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं?
3: मैं क्या जानू, आए होंगे। अब्बी देखिए तो, कोई कह सकता है बड़े मियाँ सो रहे हैं, मुंह खुला हुआ, आंखें अंदर। अल्लाह का शुक्र है, खर्राटे की आवाज ना हो तो लोग तो मिट्टी डालनी शुरू कर
2: देंगे। तुम बकवास नहीं, तुम्हारी अम्मी ने सुन लिया तो हजार सुनाएंगी।
3: मैं तो कहती हूँ अब्बी, ना जाने अल्लाह इतनी उम्र क्यों देते। बेमसरफ, बेकार, बेकाम बड़े मियाँ का दुनिया में क्या काम, सिर्फ खर्राटे ले रहे हैं। अल्लाह ना करे अब्बी इतनी उम्र किसी की ना हो, आदमी जहाँ जाए तमाशा बन जाए। अब ये तमाशा नहीं तो और क्या है।
4: अब माफ कीजिएगा, रोजे की हालत है, जरा झपकी लग गई थी।
2: माफ कीजिएगा किबला, आप मेरे कदम की आहट से जा रहे होंगे, है ना चीज आपके आराम में मुखिल हुआ, माफी चाहता हूँ।
4: नहीं नहीं नहीं मोहतरम, अपनी तो नींद ही ऐसी है, जरा पतंग हवा में उड़े तो आँख खुल जाती है। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, शायद आप खड़े हैं मोहतरम और मैं बदतमीज लेटा हुआ हूँ।
2: कैसी बातें कर रहे हैं आप तो बुजुर्ग हैं।
4: यही सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ, आप कैसी बातें करते हैं? अरे उम्र से कुछ नहीं होता, आप मेरे बुजुर्ग हैं। जरा लड़की बुलाइए, बात पक्की हो जाए, रसम पूरी कर ली जाए।
2: लड़की तो आपके सामने बैठी है।
4: माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आफ्ताब महताब, चेहरा गुल गुलाब, जिस्म सर सब्जो शादाब, चमन चमन गुलगुलिस्ता, आंखें गहरी झील, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, तस्लीम तस्लीम।
2: बेटी अभी तक तुमने सलाम नहीं किया।
4: पापा कोई जरूरत नहीं, किबला कोई जरूरत नहीं।
3: तस्लीम, आदाब बजा लाती
4: है। तस्लीम तस्लीम, हजार बार तस्लीम, हजार बार आदाब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा ऐसे कीजिए, जरा करीब आइए।

0: मेरा करीब से देखूं, मैं चश्मा साफ करके देखूं, कहीं दाग धब्बे मेकअप में तो नहीं छुपा है। अफो, ये कमबख्त मेकअप बहुत धोखे की चीज चली है। नहीं, बाखूब बाखूब मेकअप बिल्कुल नहीं है साहब। लड़की अभी तक तो पसंद आई, रंग रोगन तो कुदरती है, माशाल्लाह सेहत भी अच्छी है, जिस्म ताकतवर है। वो अब जरा चलकर दिखाइए, मैं जरा चाल देखना चाहता हूँ।
1: कबीला माफ फरमाइएगा, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता।
0: जी आप बीच में मत बोलिए साहब, आदमी एक ढेले की चीज लेता है तो हजार बार परख कर देखता है। जिंदगी भर का साथ है, शादी बाद मालूम हो लड़की लूली है। चाल में गजाल की मस्ती नहीं, जिसमें जवानी नहीं, शबाब नहीं, तो शादी करने से क्या हासिल, बाद में तल्लाक हो। जब किबला जवानी का बोझ होता है तो चाल में फर्क आता है। और मैं चलाकर ये भी देखना चाहता हूँ।
1: आप लड़के के बारे में भी तो कुछ बताइए।
0: अरे साहब, आप लड़की को पहले चलाकर दिखाइए, आजकल लड़के ऐसे नहीं, सब कुछ देखते, चलते हुए भी, बैठे हुए भी।
1: बेटी
2: जी,
1: अंदर जाओ तुम।
2: तस्लीम,
1: आपने देख लिया किबला, मेरी लड़की लंगड़ी नहीं है।
0: देखिए साहब, एक गुजारिश है, दौरान गुफ्तगू लड़की को रूबरू रहने दीजिए, जिंदगी भर का साथ उसका है, आप तो आज है कल नहीं।
1: बस किबला, अब इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है।
0: देखिए देखिए साहब, आप पुराने ख्यालात के हैं, नई रोशनी नई हवा आपको छू भी नहीं गई है। अरे लड़की को अंदर भेजकर बड़ा सितम किया आपने, और देखिए साहब बहुत हो चुका, कब से आप इस नाचीज को किबला कह रहे हैं। अब बराए करम अपनी जबान पर मेरे लिए किबला का लफ्ज हरगिज ना लाइए। हाँ, मुझे शर्मिंदगी होती है, आपका रुतबा और आपका रिश्ता मुझसे बहुत बड़ा है साहब।
1: कैसी बातें कर रहे हैं आप
0: है? अरे मुबारक हो साहब, आप किस्मत वाले हैं, आपकी लड़की को बहुत अच्छा लड़का मिल रहा है, बहुत बड़ा घर है, दरवाजे से हाथी निकल सकता है।
1: शुक्रिया।
0: माशाल्लाह लड़की आपकी बहुत खूबसूरत है, बड़ी सुडोल गुदास दबीज, मगर जरा पुराने ख्याल की मालूम होती है। आजकल की लड़कियाँ दुपट्टा कहाँ ओढ़ती है, आस्तीन कहाँ लगाती है, और इतना ढीला ढाला कपड़ा कहाँ पहनती है साहब।
1: देखिए किबला, शादी के बाद लड़के का जो जी चाहे पहनाए उड़ाए, जिस कदर जी चाहे फैशन कराए, पढ़ी लिखी लड़की है, तबीयत में जिद बिल्कुल नहीं है, मुंह की नाक है, जिधर जी चाहे मोड़ लीजिए।
0: हाँ वो तो मैंने देख लिया साहब, जिस्म अच्छा है पानी, जिस बर्तन में डालिए वो ही शक्ल बन जाए, साड़ी चूड़ीदार करारा शलवार और हवाई मेजबान का लिबास सब अच्छे लगेंगे। शोहर फैशन परस्त हो तो बीवी में चार चार लग जाते हैं साहब। बराए करम ये बताइए, आपकी लड़की क्लब व्लब भी जा सकती है कि नहीं?
1: देखिए मोहतरम, ये चीजें मेरे घर में तो चलती नहीं, वैसे लड़की पढ़ी लिखी है, आदाब व तमीज से वाकिफ है, तहजीब याफ्ता है, बासलीका है, बाशऊर है, शादी के बाद जिस तरह लड़का रखेगा रहेगी।
0: कुछ अंग्रेजी नाच बाज भी जानती है?
1: मैंने अभी अर्ज किया, ये सब चीजें मेरे घर में बाज नहीं है।
0: आप बजा फरमाते हैं, आपका कलमा दुरुस्त है, ये सब बाप के लिए जरूरी नहीं, मगर फैशन परस्त शोहर के लिए बेहद जरूरी है साहब। खैर लड़की अच्छी है, भरपूर जवान है, चाल ढाल से जवान है, रिश्ता मुझे मंजूर है साहब। आप मेरे इजार बंद से अंगूठी खोल लीजिए साहब, मुबारक हो। अरे मंगनी की रस्म पक्की हो गई साहब, शाम को इंशाल्लाह बाद नमाज मगरिब मिठाई आपके यहाँ पहुँच जाएगी। हाँ, फकर के साथ रिश्तेदारों और दोस्तों में तकसीम करिए, और ईद के चांद इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम से बारात आएगी और बहुत ही शानदार दावत वलीमा होगा। अब बिस्मिल्लाह, देर किस बात की, जरा अंगूठी खोलिए, महफूज रहे, इसलिए मैंने कई गांठ लगा लिए है, मैं जरा खोलने में कासिर हूँ, अब जरा जहमत फरमाइए।

0: तो बताइए साहब कि लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है, हसब नसब क्या है, शिजरा क्या है।
1: आपकी इतनी उम्र हो गई, आप बरखुरदार हैं, आप कमाल करते हैं। कहीं लड़के के बारे में इतने सवाल किए जाते हैं? अरे लड़का रईस इब्ने रईस है, खूबरू तजुर्बेकार, जान दीदा, मुश्ताक नजर, फैशनेबल। और आपको क्या चाहिए? अरे आपका पैसा वसूल हो गया जो आपने इश्तार दिया था। अब खोलिए ना किबला, इतनी देर से इश्तार बंद आपकी तरफ बढ़ाए हुआ हूँ। खाली सोने की अंगूठी है, मुझ पर हीरा लगा हुआ है।
0: जिद ना करिए, पहले आप लड़के को दिखाइए। ऐसा करिए, कल शाम को अफ्तार पर लड़के को ले आइए, साथ ही उसका शजरा भी। तालीम याफ्ता तो जरूर होगा, मगर तालीम से ज्यादा जरूरी तरबियत और माहौल है। बात करने से तरबियत और माहौल का पता चल जाएगा।
1: आपकी समझ में कुछ नहीं आया, आप नेक काम में देर कर रहे हैं।
0: तो आप आज ही शाम को लड़के को ले आइए, जो नमक रोटी मैसर हाजिर कर दूंगा।
1: आप नेक काम में देर कर रहे हैं साहब।
0: आप अगर अपनी सवारी ना लाए हो तो मेरी गाड़ी ले जाइए और लड़के को ले आइए, जब तक मैं अफ्तार के असबाब मैसर कर दूंगा। अगर आप ना जाना चाहें तो टेलीफोन करके बुला लीजिए, कम से कम लड़के के यहाँ टेलीफोन तो होगा।
1: किबला, आप पीरी में बड़ी नादानी कर रहे हैं, ताखिर की नामाकूल वजह मेरी समझ में नहीं आती। हाँ
0: देखिए, जब तक हम लड़के को ना देख ले, उसके हसब नसब के बारे में ना जान ले, तो कैसे यहाँ कर सकते हैं?
1: देखिए देखिए, मैं बड़ी देर से आपकी नामाकूल बातें सुन रहा हूँ, आपकी नादानी देख रहा हूँ। क्या अभी आपने माँ का दूध छोड़ा है? आप अपने को लौंडा मुकर्रर किए हैं जो आप कुछ नहीं समझते? ना जाने आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं नाई हूँ जो रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं खुद लड़का हूँ। आप मुझे समझते क्या है? अरे रमजान की वजह से आपको रमजान मियां नजर आता हूँ, रमजान ना होता तो मैं मिस्टर रमजान नजर आता। ये तो रमजान की वजह से आप मुझे शेरवानी में देख रहे हैं, वरना आप शाल स्किन के सूट में देखते। हाँ
0: आप तशरीफ ले जाइए, कहीं ऐसा ना हो रमजान मियां के रमजान के महीने में आपके मुंह पर इतने घूसे मारूं कि आपका रोजा आपके खून से धुल जाए। और शर्म नहीं आती शादी करना चाहते इस उम्र में? अरे आपका दिमाग चल गया।
1: अभी मैं खुआ रहा हूँ, और 60 बरस से कोई अच्छी लड़की की तलाश है जो मेरे हाथ पैर पर ठीक लगे। आप खुशकिस्मत है, आपकी लड़की मुझे पसंद आई। मैं कोई कम फैशनेबल आदमी नहीं हूँ। हाँ हाँ, अंग्रेजी नहीं जानता तो क्या हुआ, अच्छे लोगों में उठने बैठने की वजह से मैं सब मतलब समझता हूँ। किशमिश भी छुरी काटे सिखाता हूँ, और पोस्टमैन से फुल ड्रेस होकर लेटर लेता हूँ साहब। हाँ,
0: अब चलते बनिए, आप चलते बनिए, तशरीफ ले जाइए यहाँ से। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आप नीचे और मैं ऊपर नजर आऊं।
1: चाचा साहब, आप बेकार नाराज हो रहे हैं, अब मैं क्या जवाब दूँ? आप रिश्ते में मेरे बुजुर्ग हैं, बाप के बराबर हैं।
0: अरे तशरीफ ले जाइए यहाँ से।
2: रोजा चढ़ा है या मेहर पर झगड़ा हो गया? लड़का तो अभी देखा ही नहीं।
1: अम्मी आदाब, तो
0: सुनती हो, बड़े मियाँ खुद ही लड़का है, अपनी बात लेकर आए हैं।
2: तौबा, अच्छा और दो इश्तहार अखबार में। अरे ओ नसीबन, जरा झाड़ू तो लेकर आना।
3: क्या हुआ बेगम बीबी, क्या कोई जिंदा गंदगी नजर आई है?
2: जरा मार तो दो तीन झाड़ू, जवानी पकी पड़ती है, शादी करने आया है।
3: पार्टी नहीं तो अभी फावड़े देती हूँ, वो एक ही जवानी नवासी बोती नहीं थी, यहाँ चला आया हुआ।
2: अखबार में इश्तहार फिर से दे दीजिए, लड़के की जरूरत नहीं है। अल्लाह बताए, इश्तिहारी शादी।

अभी आप सुन रहे थे ड्रामा उनवान था शादी का इश्तहार, तहरीर थी जनाब जावेद उर्फी की, पेशकश सरफराज अहमद की। यह आकाश

संगम। इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे विनोद राठौड़ और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज में है। फिल्म का नाम है हम।

सुरेश वाडकर और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में ये नगमा आपने सुना शेषनाग फिल्म से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारे नशरियात जारी हैं। फिल्मी नगमे यहीं तक थे, अब वक्त हो गया है खबरों का।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: میدیم به ویگه دو اکشوانی کرگلین وقص با خبرونی تاسون سوکست برگی خبرون لنگن مزد.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Trientes Erdeluk Sifia Kaskwegen in Chigut Pin Medium Vivica, Duakashwani, Kargilin Kasata program in Mazat Sharba Nachumunifia.

0: kaksam nga te stress po deyao tang cha ki di shilang un tuk ma tuk pa nga te sngati jiguni ka lep chukpi koshish bacha cha zirna daksam yang survey gyong suk organic matter organic carbon po organic matter kuriyang danchin ga norbalang yin shilang ya koin urine po ya dona nga te samshik pata hun nga te siyang na phingi ta kudun gang ma rule chas pos base organic matter yaranga yari siyang nu organic matter pos base organic carbon yari siyang gyala cha chuk organic carbon mangmo cha chas pos base yaranga नाइट्रोजन यरी सेंग नाइट्रोजन जरबन स्नल लंगाती सरकारी लुत मियो मतल को लुत पो ओदे ताकत पो यरंग यरी जिंगुन यंग मन मंग मो जुक मतलब गलवा छाचे थाना कोशिश बचा दी शिलांग उन तुक मा तुक पांग अतस नाती जिंगु निकाल हेप चुपे कोशिश बचा दोना शिलांग उन यरंग दांग देरिंग तुस पे नाता दी सोस बेंदु की शिलांग उन शेरपा छाना एकदम से खेरे फेत योतना फेत उनिकास काम शुक काम शुक पना चाम शिक निमे शेत योतना Deka lungspo mangmo dulchas lungspo ang nuk yarang a tsam shik shilang peng takat yot na don gangma ping sekere shilang pos kam shu chen su kam shas pos base tsam shik microbes yot na sherpa met na kho docha men khoi population pu khoi abadi de microbes si trinuni abadi bilkul chote jache chana koshish bacha di shilang un ekdam se bahar la makher la zashik na tes siluni ang dakse skam shu cha ne siluni ang skam ser yapna yares और जाशी दुंग मी कोशिश दुंग मना देमो बस को रूल चेंज सो गा है नता दुसोक्स प्रॉब्लम ची हूं दु की नोर मंगाती जिम उनी अच्छा सुनी का नत मंगमो यो वाजा चिक दुओ दुक तुक की नते मन मंग में कर देमो बस रूल मा रूल चुस चास पोस बस दो निका स्ट्रिन या नत मना मंग कोशिश बचा अर देमो बस रूल चुक से ने नते नती जिम उनी का कोशिश बचा दोन अर देमो बस रूल बना साम शी न्यूट्रिएंट यो ना दोन गंग मा नती जिम उनी का लेप चेंज दिया जुआ इनकी शिलांग अर देमो बस यारस निमे का स्कम्स मास कम छुपा कम शास पोस बसे सम शी न्यूट्रिएंट उतना अगर का तो निमे का यार 90% न्यूट्रिएंट लॉस छना सिल पे हजक छास पोस बसे न्यूट्रिएंट मंगमो लॉस मचा 5% दो गतांगा और कम बाय अंचिन देखा नयंग गते स्पीति टाइम पे यंग एरे शिलांग पो या रूल खानु ने एरे जिंगु ने का खे रुक सामना नल्ला चेक बचा शिलांग उनजा शी शेरपा दो मिंदु दोन मेत नजा शी छिक ग्राम से ना निदे खातोत पे का यंग प्लास्टिक दो कम अज कम 10-12 दिन जक्चा जाशिक नीमा टाइप ची के खेरे ना प्लास्टिक पोतांगस्पा छात पोस बसे चाम शिक देंग लंगस्पा होता दो देंग खोरे बात पोस बसे यंग माइक्रोब्स देंग लोग से उसे दोन इस देश शिंग शिलांग उन्हें अर्थ मो बसे जो से दोन रूल बने यंग नतान अर्थ मो लूट पोल दाने नतेस नती जिंग उन्हें का स्पीड लगे दांग दिनी तुस पेंग तुक पी कोशिश में बचा चाम शिगेरी लोमा ओमा उतना जमा बसे ना जगह ची कह रहे खड्डा भ्रुसे देंग कप से ना खातोत पे का प्लास्टिक चितंग से जाशी ट्रिग योक से तंचा छाना यारंगा दिरिंग में ना एलो में ना यंग दो साल लिर के अपने यारंगा ओदो फिंग माना यारंगा देंग यंदा आसमान ची थोपचिन गाओ नीम ऑयल जरे ऑर्गेनिक आसमान पो सुना जो आयुर्वेदिक टाइप छाना गातेस बाहर ना नीमी पत्ते ऑयल खेमा बसंग नस समेत की नती खारखोर ला स्वा खचिक दुख ती जानवर उन शेरपा मना जामे शेरपा मिजा चस्पो खुदा वंदे करीम इस नती जानवर उन दो चोक शेट चिकतांग जुक दो चोक सेंस चिकतांग जुक की कोंगा पता चिन दुक की छान पुआ सोंग से नखों इस दे सुनपो यो खाने स्ट्रांग जामें दुक खंपा लंटांग बुक्सुगुन सुनपो यो चना मन मिस ना ओदो नियंग जहर चियो तें सुक ओदो न क्यों से थक से ना जाशिक चुयं रूल चु से चुयं जबांग से ना स्कूर तांग मा चोक जक से 24 घंटा या 48 घंटा दो दे जक से ना नी दो ए छु थरक स्प्रा से ना देमो बसे चामशिक यंग दे जाडू बुटी यारिस तांग थप चिरे ना दे छुन यारेज यंग अगर का तो दो यंग 10 लीटर साफ छु यंग डाइल्यूट बसे ना स्ट्रिनुनिक स्प्रे बना काफी कंट्रोल छछन बक्सेस चर्चा
1: कैसे ता दक्षिण सक पे इंतेस त्रिशु का स्नाब इंजुक सोत पेन और दिया मजा गए दी त्रिशु ने कने इंतेस फन के लेने तुक तुक त्रिशु के मना यंतन सक पोस तामस तोत खेल ले चुके अखुन बाकर जिशान इस कते
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

0: Tres Agentes Program in Chigat Pin Sharba Nayunifia. Medium Vivica de Akashvani Kargilin Waxpo Shami Bajatruk Chinduk. Kasata Akashvani Delikana Hindina Anglesian Khabarun Rilebet. Rilevla Girbazat.
1: Namaskar. Akashvani Samachar Kesat, me Lavlin Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश,

0: टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। एआई, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
1: करता हूँ।
2: आरबीआई कहता है
3: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 바오 다나 데카 된다 바민도 게랑아 체들바나 도창 난데 셰스민도 게들바나 된다 코야 아다 부디 셰핀 타타카니 아다 부디 셰핀 그랑 데테는 이슬람이 된디 와누멧 베트남 무슬만 멧핀 멧바나 피 피바들 비된데 가면 피가든 메네 바헬포 카르포들 비된다 세히인들인도 게나 다나 ते फिकार पुरस्तिकते ना फिकार पुरस्तिकते ने सिक पापा से दून लाखो मोपार सिस्पा सब जमा बस मिल गया सुस ठाठा खाने से मोपार सिस्पा जमा बस है ना जस लो मोपार कौन जरे लो दी खार पे बुनियाद पे अनु खेरेस दी खार पे बुनियाद पे अनु दे खेरेस सास पी सिंगे गंबाओ दो नयां दें देगा पटवान जर भी दें देगा मल गया पटवान से भी जानवर चमलो दे युंगरुस्पो चमसे दी बुनियाद पे अंतामर गुसीन दे बुनियाद दो तांग नरे दी खिरी खार को लेगी ना खार खार चचीन तांपो चचीन देर भी खोआ मुपर सिस्पानी दे देन नॉन तांग लो दे कना तन्ना माने दा तन्ना दे सास पी सिंगे ग्रामबा गारियो दो यंताल बतांग से शायद माने दा माना शर्बा ना चुंगा उमा पीन दुख दुख दे पाचियों को मेगा तो ताल बैठने तो पूरा मल्से का सती रीची का या फिकारी रीची का तो ग्रामबाव थोप लो सिंगे ग्रामबाव थोप से क्यों लो ए पटवान जर बिदें दी जानवर पे जुमरुस पहुंचों लो दोन क्यों से दे अंतां से देखा र पोखोस सिक्स मिल जाना
1: दरिंदस हाजी मोहम्मद बाकीर के ना صوتی تاریخی سرلا انگین چکت پین میدیم ویوی که دو اکرشوانی کرگلین

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अस्सलाम वालेकुम आकाशवाणी करगिल कना यांग फेसबुक प्रोग्राम जुखुरे ना सैयद काजिम हुसैनी यंताना खतुक छनियोत निजुना सलाम पुफ्रत मचन सोंशिक यले प्रोग्राम यनखनी अछनु मुका का फोनोन यंता मुजिन उतंग नचस आकाशवाणी करगिल स्ट्रोलिका फ्रॉम अचिक प्रोग्राम ना सिक्यू मिनिस वरला यंता सुपा हगोरे ग्लिप चुकी फ्रलुसबा देना ने चोक्सला यांग लेगिना फन किचन प्रोग्राम जुखुरे यंताना खतुक छनियोत अर्ध्यांगमा बेद दी प्रोग्राम पोंग यंती फिला फन किचन चिक छो कसने यन खानुन दिलिंग सी दी प्रोग्राम पे अंग सब बस नन लंगस प्रोग्राम में गुजुक पे का पीएम 15 पॉइंट फॉर दी वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज स्कूला यन धान सुपर स्पेरारी यंग देर गया अपना आकाशवाणी कारगिल टीम इस ओपे दिलिंग आईसीडीएस ऑफिस कारगिल लेप्सो दिखा ना जाएं बोस पेरा था मीना सईद अयूब शाह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिशन पोषण आईसीडीएस करगिल युक्स खुए कना इन तासुपा फेस पत्रिसेगा फ्रचुगेत कसनि यन खानुन सब बसनन ला ngने रंगा तक्सपे तंग ngने रंग फाइल हिंदुस्तान सोस आजाद युति यंग ngने रंगा डेमोक्रेसी जमहुरिया युति ngने रंगा युरचिक इनंग यंग दी युलपियानु ngने रेस मिसेस प्रलिन योतं कसनि दी युलपियानु ngने रेस मिसेस प्रलिन योतं यंग दी युलपियानु ngने रंगा हक हकुगुन गामी फिला हुकुमतिस लोसो लोसो जस्तिका ngati हक हकुगी हिफाजत बे फ्रलुक बिनुदंग देना गने रा तस्मयतंग माइनॉरिटीज रे दी माइनॉरिटी सुनला गने री फाइल हिंदुस्तान यानु लेकिन खास अहमियत चोतंग यान दी माइनॉरिटी सी हक हकों ने सुंगलुक सिफिला हुकूमत इस लोकसो लोकसो फ्रलुक सुन बिनुदंग कसनी दोने जुम से गतंगा हुकूमत इस लोकसो लोकसो डिपार्टमेंट नाल जोंस नुकात चोगी के डिपेंड योतपी गने रा स्कीम गतन चोसेतंग गाउ लंगते पीएम 15 पॉइंट फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी ऑफ माइनॉरिटीज रे जर बचातंग यंग दी नका चोगेनु दुचो लसना गतोन यंग दुचो स्कीम गतु योतं गाउ ngatanga हुकूमत इस ngati अक्लियतुनी रदेलुक्स ना स्ट्रोंग लुक्स सी ख्याल जक्से चोसे योतं यंग कुनी फनके फिला दी स्कीम उन चोसे योतं निंगेन कानुन दुनिया ना चिटिक दो इंचुगां किंगने रंगा फाइल हिंदुस्तानी हुकूमत इस हमेशा गने यदि हिंदुस्तान पु यर्गेस चन हिंदुस्तान ची चुमिंग न गने यदि फुबाजबिस कुनी शेस पी का फोकस ताम अच्छा था यान दि शेस पी का फोकस ताम मिंग न हुकूमत इस पागजी गा सुचिंग न्यालबा चन ची और ना को माइनॉरिटी से न कतु इन न कतु उन खुआ खुरी फुबाजबिस सुन ला सबक ताम मिंग न के लावा जुरअत में न कतु हुकूमत इस खुआ रोक्स बे मिंग न खुआ स्कॉलरशिप इस स्ट्रोलिका रोक्स बाचा था चान दुसोस स्कीम उन हुकूमत इस चोसे गने रंगा रोक्स बे फ्रलुक्स बातं निधि पी एम 15 पॉइंट फॉर दी वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन आजोस गने रंगा थोबे पी प्री मेट्रिक ना पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप उन दो मिन मलोसो दोस्ते के थनी स्कॉलरशिप उन थोबा चाहता यहाँ दो हुकूमत चौसना गने रंगा छोर रोक्षी ना ताकि गने यारी फ्रुवाज भी सुन ला शेष तांग में फिलांग गने रंगा सख्ती मदद ची थोप तो दो मिन मांग गने रंगा लोसो लोसो महकमे नाल जोंस गने रंगा लोसो लोसो दोस्ते के स्कीम का तुचो से होता ताकि दि स्कीम ने स्ट्रोलिका गने रंगा गने री मिछेन रोस पे पे चलाउन या गने रंगा रोस दम छात पे चलाउन गने रंगा थोबे मिना हुकूमत इस गने री फिला रोक्षिक बो दि फिला दि पी एम 15 पॉइंट फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी सी स्ट्रोलिका गने री फाइल हिंदुस्तानी आजाद हिंदुस्तानी गने री हुकूमत इस हिंदुस्तान आयोत पी लोकसो लोकसो छोज लोग सी मीमांस कुन लोकसो लोकसो मीमांस कुन गाउन अक्लियत यान दुक तुक दू निस्तुन लोग सी फिला लोकसो जोस्ते का फ्रलुक्स बेंची गयो तंग गा कसुमी जिक शिक छाप शिक मेत पाखुन कुंती हागुन लेंग मी फिला दुन ले यों तुक यां यूं मेत पे नमजें कुई मिछें लेगी नर्गेल बे बसे स्प्रल बेंगेनु कसनी ngas ngadis prade ke jase akashwani kargili team chik dering icds kargili office las kyo tot chana ngachai bos pratam ming na sayid ayub shah icds c डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इन सुप छनंगाते डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के नियंत्रण सुप आईसीडीएस ना जोंस चाम सिंह ता सब स्कीम में दून स्कोर ला इन ता सुप फेसबुक पे सिर्फ हो चुका ते सोला स्नाबाज सवस
2: अल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह
2: आकाशवाणी कर गेली पूरा टीम छोस ना यार ओजु थ्री मुझे जो यार ये रिंजन तू सेम तू स्टा से यार ये रिंजन खास कौन ना तामी मास बोलला शेयर में पिला यार तो जो जैसे कि ना ता लोकसो लोकसो महकमे ना जोंस ना ता गवर्नमेंट स्कीम के तुझक सो मता जो गाऊं ना ता मीमास को निफंतोस मींग ना या मीमास बोलला यार गेसी तरफ लिखे मींग ना क्वारोक्स बे मींग ने जो सेनम छन जनन चोस ना आदत आईसीडीएस ना आदत पर ता ना कतुन आईसीडीएस ना जो सुग सुग सो सब स्कीम पे तो यो या आईसीडीएस फरंगा चोस डिपार्टमेंट चेंज दिस को लेरेस मति ने खन ल मोचो सब
3: सब दोनों ना

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2000

0: guliyot koi height weight pu mane important cha da bana ta kumal nutrition che ne menu khte ya du mane zaruri du la public sir me sir cha har mahine nu ek bar kam se kam daily ta cha 3 4 ghante tyan ta na pu mamu matu nadi ngachi center ke cha heart first rule me dekhi matlab pu sunte pu in unko hum waisi ko matlab khushi khushi ka yahan swayan span ko ngache saaf chizar cha du sokta jam in ya ranki ko shobu kure bichu du shobu kure yaad bachu du du sokta jam in ek to sunte pu ni फोकस करंग शॉर्ट हो देरा काम हो वो जल्दी बोर से जिन मैच 15 20 मिनट ही यारा एक्टिविटीज या जुक चोस टाइम टेबल भी चोस दे दिया फ्रून सेंटर के कल्चर नहीं आता कल बना कुल्या कुल्या फोन डॉलर छ जिन डायरेक्ट फोरम फर्स्ट एंड उसको ले आता मैं बस ना गति इधर बाहर लाने चाहिए जमन यारा सुन से इतना फुसागा गति अजू के अंतर यारा फ्री एजुकेशन एनएसयू मांगो यो बाहर लाना तो गति इधर खास इधर अवेलेबल हो मैं दाना खास कर गति गांव सागा रूरल एरिया नु मैं पना सेंटर पुखरा आंगनवाड़ी स्कूल तैयार भी फिर मन जरूरी प्लस एडिशनल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन पाउथ हो गए दो रुकैस बस कि पब्लिक सगा कि फ्रोम सेंटर के कल्चा वर्कर उन सपोर्ट बचा कैसा बख्शीस
1: कैसा जो मन आई सी डी एस पे लेकिन गलबा यंग लेकिन कक्षन स्कीम चिक थोड़ा जो chandian yeres yang duang mol sanju legin kachan spiri ge du mol ki mata phubas bis pun da ding ates na nga jagat de kana phun ngwa na ates mobile putang se ha phon edik chachu sanga ta jagat cha ko kule kule ada chana ka to de kana ko phon met patuk chamin maruk pa na du kho kule kule afna khe cha jin koi mi mi ka asar ho ji koi sihati ka asar ho jin isse behtar dyang nga spirit ed ka to bana isse behtar ko ata आंगनवाड़ी के निम्बो का तो खेर ना कतुन एक तो खुद सेहत पहुंचा कब बचा सों ऊपर से खुआ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जान तो बचा सों हाजू छना ओवरऑल डेवलपमेंट यानो काफी मदद तो बचा पाया जो ताने दिया उस तरह ची किया रांजो टीप पर जो कि आतां दस एस पी एम एम वी वी वाइज रे आतां स्कीम ची इसको ले स्मॉल साजू छना अदर स्कीम पुंग आतां गा सुच किस अवेल बन बेद ना कतो खुआ गा तो गा दिया नुक या डॉक्यूमेंटेशन ची होचिन कोई प्रोसीजर ची होचिन या यंती वर्कर को खामा सो से दू खा अवेल छ छ ने या खरा अप्रोच बार उसे ना दिस को ले रे सासी मोर छ जुके
0: सर दे दे का माने जा शि दू दू गति अक्सर यारा दे ना सासी कल्चरल बिलीव आ गति दे यारा दू छे नु जासी पहला ना गति माने सास जा जास को
1: बिल्कुल
0: पहला खरा ना दू यंग गति समाशी को रंग दुख दे यारा मले जान छि सच जान छि सिलमिक छे फलन जी छे या सास जा जास को गति कचरे आ दू पाया यारा दे ना ये सब संचास पुचांग को मैं आजुक जी मेन जब ना मेडिकल चेकअप को शुरू के नंबर को
1: शुरू के नंबर वोशिंग कर सा
0: चला सबसे पहला ना अच्छी वर्क करूं दो दो मैं अक्सर प्रॉब्लम चेन हो यार कि पहला ना को मैं पता छावे
1: बिल्कुल
0: सांस जा से यार ना पता छना बार बार फोन बार को सुनो की डॉक्यूमेंटेशन तो अच्छा यो जानता यो होता तो दे दे नु को सक्सेस ना चाहे यार चैलेंज हो संचास पुचांग ना डंडिक से समेत दान दिन दौर पे नु यार ना हर जगह अति मेडिकल सुविधा यो फैसिलिटीज अवेलेबल यो दे स्कीम या गवर्नमेंट इज यंग फैसिलिटेट अंग आता तांस यो
1: कसा
0: ए चिकने मॉनेटरी बेनिफिट बुसों 5000 रुपीस सों देखे 5000 6000 ने कना अलग फोरंग आता चलो अपार्ट जिर नंग कोई हाइट वेट उन चेक बचा कोई एंटेनेंटल चेक बचा या कोई प्री ग्रोथ उन चेक बचा उन सब नमन यारा जरूरी पार्ट्स हों देखे अंगा चांगा तीमें सैंपल हो दिया ना हमारा बिल्कुल सैंपल है अंगा ची आंगनवाड़ी वर्कर ला सिर्फ जरूर देखी आंगनवाड़ी वर्कर पुला सिर्फ ना प्रेगनेंट यो यंती प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना स्कीम पहनूंगा एट बोस जर नका तो वर्कर को खामा छिन खामा यो जर नका को खामा छना लिख मतलब फोन देने कुरी का मोहल्ले यो जरा 50 मीटर रेंज पे यो
1: कैसा
0: चले ध्यान डॉक्यूमेंटेशन चिक चांग दंदिक में देना सिर्फ मतलब वो नौकरी खन ले तो जमीन में आया यार जिनका नौकरी है उसको नहीं मिलेगा और पहला बुझाओ दो ना सेकंड बोमो दो यो जरा पहला बुझा बोमो चीज के रहा यो सेकंड वो कंपलसरी बोमोस के लगा तो 6000 रुपीस
1: जो
0: देखे ना मोर देन 2 यारा तो चमेन यार दो ही गया अपना यंग यारा अच्छी डेमोनिटी बेनिफिट तो चमेन सिर्फ यार गवर्नमेंट की तरफ ना जैसी इंसेंटिव सी की फॉर अवेयर सी बसे मोटिवेट बसे इन सुपाया ताकि खुं गवर्नमेंट इन ए सिचुएशन ने वो कनेक्टेड लूस भी किया खुंती चेकअप को कंटिन्यू भी किया आयरन फोलिक एसिड जे किया दक्षिण अति यारा नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्विस इन शिखर 4-5 साल लिया हमने सर्वेक्षण दे सब अंगति खासकर प्रेग्नेंट उन लैक्टेटिंग मदर उन मन एनेमिक हो जाना खराब कम ही होते दूंगा दो समेत हकीकत जी इन चादर बनाती खासकर प्रेग्नेंट छजना यारा आयरन फोलिक दे आजुक छजना डिलीवरी छजना आईफोन जामित आयरन फोलिक एसिड पोजेस नहीं हुआ मैं जब मजा ना मेडिकल के ना कौन क्यों पाया कौन स्थान मेडिकल डिपार्टमेंट इज यारा सखवा आयरन फोलिक एसिड वगैरह दोन खाता मगर खम्मा सो से गतिस ईमानदारी ने हमबो मतेस देशमन पो जम आजाना दे सप्लीमेंट पो मतेस जम आजाना नता खरे कमी छार को
1: बिल्कुल
0: देव ने हम पो यंग दा चोगा दो जंग जर मुखा जी यंग जन्म ता छाना नति

0: सहती पिया अंगतेस खयाल जको नतीजे के कना लिहाजा यंतेस चप प्रेग्नेंट सों या कंसीव सों वर्कर ला या आशा युद्ध नती हर मोहलेनो खून नंबर थोक से नची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेनिफिट मॉल लेन मैं यंचा सों बाकी पूरी मेडिकल चेकअप उस सब योद्या ना एंटरनेंटल चेकअप सब योद्या सो आयरन फोलिक जर्ट चिंदा सो कोई बुलेट यारा हेमोग्लोबिन तचिन बाकी चीज सगा फचा सों सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को नची करना थपचा सों सना दोन सक यारा अवेल बचा सो मन जरूरी इन खोई पिया
1: कसा जो छानी यारा यहाँ पर चिक दो टीप जो मतान दक्सा लैक्टेटिंग मदर्स ओजिन दहन अमन गंगा तीस पर का तो जरना का तो दक्सा गति माशरे नुक दिस लसुक सिंह थो मचिन दो पजू की गाते फ्रून ला या अमे ओरिजिन मातंग मा यंग तरक कतु निकाते खुआ ओरिजिन तंग दुखा जो छाना खुआ दु चाम जिंग आता नो की सजिन यंग अमे ओरिजिन पुंगा ती फ्रून ला गत फन की सजिन दिस
0: सपोज पहला ना यरा गति दियानो का एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरे अचीज अवेयरनेस बचिन यरा सगा की 6 महीना ना लगभग 6 महीना सिर्फ अमे ओरिजिन पुता चिन यरा फ्रुआ और दे ओरिजिन तंग में तरीका ना फलगा अची मतलब गति फील एनो को गति एक्सपर्ट यो गति स्टाफ सब यो अवेलेबल कोई समझाएं बचिन होम विजिटेड और आना बचिन यारा बाकी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट चाह छाना या सेंटर के स्क्यूट नंग गेट टुगेदर सी फिर देस नंग आते स्पेरा तांग से दोन सारे का वहाँ इवन पोजीशन पाउंस रचिन यारा का सुपर ब्लास्ट फीलिंग बचिन जरे अपनी वर्जिन पुमा ना जरूरी नहीं यारा दियो फूल लग चाम ची चीज गोशा योत ना यारा कोई इम्यून सिस्टम पुसे ट्रॉम बे फिया गाता अमी वर्जिन पे सोक्स शानदार चीशी मैंने में दुनिया दिया दिस थिंग ना यारा दिस जब ने यंग प्रॉब्लम चीशी दो दो एक्सक्लूसिव छह महीना एक्सक्लूसिव फ्रेस ब्रीडिंग बस रियाप ना गाता अच्छी ना यारा कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जरे दो बचिन की छह महीने रियाप ना जन फूल लग चिता यारा दो यंग अलग अलग अति वैक्सीन कार्ड पर फोन लगे मोटो बेटे यार दे कहाँ से बिस्यो देंगे थी पेरेंट्स तो सिलखान योजना का तो दे कहाँ टाइम चल छः महीने की अपना खुआ सात महीने के ना आठ महीने सब कुछ चिता चिन नौ महीने के चिता चिन एक साल के चिता चिन गाती अक्सर प्रॉब्लम चिंगा दो समय कि फोन का कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पैनो अक्सर यारा खास कर टाउन में नचीसी मतलब गाँव सा खाना अक्सर दो छीनो कि यारा गाती फे का ओरिजिन चिता से या चे का ओरिजिन चिता से कंटिन्यूस यारा खुआ दो मतलब इस खुआ और छः महीने की अपना खास कर आयरन ही आयरन फोन ला जरूरी था मोर मशीन आयरन कर रहा था आयरन वो छः महीने की अपना कांच पर जरूरी ठीक और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग पहनो बता खुआ जन पो वेराइटी अंग ताँचा वेराइटी खचिक ताँचा ची अवेलेबल ही होता मैच वैसे ताँ मजन दे प्यूरी फार्मे के ताँचिन यार मतलब सेमी सॉलिड चीज ऑक्सीज यूरे ताँचिन फ्रुआ दो गता अलग अलग वेराइटी खचिक ता मोर मशीन और दो खचिक तंग मन नहीं चो छाना कोई बिहेवियर पू यार जो चेंज छिन की को जन खचिक पसंद बचिन दे गता यार सुनमांग जरूरी छे यार प्रोटीन आ जरूरी छे दाल आ जरूरी छे शाह जरूरी छे पूना आ जरूरी छे खैर खोजा खान मजा खान मगर लेकिन गता जन ये कसम खचिक जरूरी छे जो भी पिया गता प्रोटीन आ गोसेत गता यार जन गता बाकी विटामिन आ गोसेत मिनरल आ गोसेत दो यारा गति छाने दो फ्रून ला अक्सर गति कल्चर पे दो कि वैरायटी चीक सा कंटिन्यूस छः महीने की अपने तंग मना खुआ खुआ देर गोस्खान न्यूट्रन सुन सक थोड़ा मिला और एक डेढ़ साल की अपना या देर दस खान के दो पे टाइम छाने दस खान पूरी के शख्स खुरा यारा खुआ शख्सी की जाशी के खराब रिपोर्ट भेज दिया लेकिन बना खुआ कोई बिहेवियर को ठीक बेफिया खुआ तो बच पाओशी खुद लग पे के ना जच भी कोशिश बाओशीन यारा एक डेढ़ साल वैराइटीज का चीज ना पूरी पूरी सब दो गति वैक्सीन कार्ड पहना हो गति यार जन दे वैक्सीन कार्ड को तो बदले हम फ्रू नहीं दया ना उस बीच में यारा छः महीने में चिता से सात महीने और दया माइल्स फ्रून पहुंच बीच तीन महीने में फ्रूस ची बचिन छः महीने के अंदर फ्रूस ची बचिन सात महीने के अंदर फ्रू का लिप चिन डेवलपमेंट को सब कोई चीज है खोगा खोज बाला ग्लू नाम बचिन दो सख्त जिस दो सख्त यारा गति गति देखे ध्यान को कम रे दो देखे ध्यान पाँच को मरे जरूरी दो
1: कसा जो आयुब साहब एरेज माना ले गिना अर्गल बने बो सल्पो बस एरेज ना था आई सी डी एस नाल जो जो स्कीम ने स्कूल ला सल्पो बस मोर जो दो मिन मेरेज यदि खसकोरी गंग ना था मीमास पर नसा जो मता इसके जत पी खोपनी मत पी अमन देनो ने सोसला ओरिजिन तंगनी अमन देनो ने सोसला मता सुन से प्रोवाइज भी स्कूल ना एरेज यदि खसकोन सा जो तना जो मते सर दंग मते बे जो की यदि दि खसकोनी गंग ना था मीमास पर ने से फनकी ग्लेंचा इन यंग यंग मत पी नमजे नुक आई सी डी एस यनुक जोग दर जोग जितना हो सके मता फ्रून निस पार्टिसिपेट बचिन फ्रून निस पार्टिसिपेट बचिन जर बना अता नामो लशूर
0: चाहे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन मातृवंदना सो जन सोलह सेंटर domestic balance is wo chanang du di ngati

0: स्टॉप सेंटर कारगिल लश्कर पयांचल और फ्री सर्विस जो 5-7 दिन फिर यहाँ बोर्डिंग लॉजिंग सब फ्री हो और बाकी हर मोहल्ला अनुमति आंगनबाड़ी सेंटर हो वर्कर उन कनेक बसिंग अच्छी अल्टीमेट सर्विस डिलीवरी तंखन पुकर आंगनबाड़ी सेंटर इन देखा चाहे प्रेगनेंट हो चाहे लेक्टेड हो चाहे छुट्टी फ्री हो सब देखा स्क्योचा आईसीडीएस ला सपोर्ट बचा यंती हक इन और उनका मौका दो तंचा कि अति फ्यूचर फ्रूट सकें अति डेवलपमेंट फॉर देम हो बसे छोक संबिधि अंगता सब लोग से मेहनत बचा शुक्रिया सर
1: कसे जो ये रिस मन ले कि नसल पे बसे सब मोल संजु अति देनोर दम पे जो दी प्रोग्राम को ले कि अति यंथन निफला फैन किचन प्रोग्राम छ छोक जो यंग यदि रिंचन खसको निकना अति मास पे फैन किचन लेनु जो इंदो आकाशवाणी कर की पूरी टीम छोसना यंग से छिगरा और जो सिर मुझे जो ये रिंचन खसको सल भी फिला देन इन बोध रिंच प्रोग्राम पथामाथोन खुदा न रन कतुन यंग मेटी प्रोग्राम पे यंग लेगनार गेलबा खतुच कुरे तन खतुच छोक दसुपा सईद काजम हुसैन इजाजत चलते बोल या जो खुदा न सहमोनी फखरे।

0: Rita Pentes, flagship program chiga ingenin chigat pin. Medium Vivika Diva Kashwani Kargilin.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

रोम इटली में अपनी इटली की अपने हम मनसब जियोर्जिया मेलोनी के साथ वफ्द सतह की बातचीत के बाद एक मुश्तरक प्रेस बयान में नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक जहाजरानी बंदरगाहों की जदीदकारी और लॉजिस्टिक्स जैसे शोबों में इश्तराक को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इटली की वजीर आजम ने इस मौके पर कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन दोस्ती बाहमी एतमाद और वकार पर मबनी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अमन कानून के खतरे

0: से बुजुर्ग लोग होंगे, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होंगी, तो इनको थोड़ा सा इसमें बचाव करने की हिदायत हमारा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हम इशू करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारी यही सलाह है आम पब्लिक को कि जितना हो सके दिन के टाइम, स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है, जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर।
1: मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 42.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:26 और गरूबी आफ्ताब शाम 7:30 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: जमीन आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं बसारत कुल। आज दुनिया भर में वर्ल्ड बी डे मनाया जा रहा है। शहद की मक्खियाँ कुदरत का एक अजीम तोहफा है जो न सिर्फ शहद पैदा करती हैं बल्कि ज़रई पैदावार, गजाई तहफ़ और माहौलाती तवाजुन बरकरार रखने में भी बुनियादी किरदार अदा करती हैं। अगर शहद मक्खियाँ न हों तो फल, सब्जियाँ, बादाम, सेब और कई गजाई अजनास की पैदावार शदीद मुतासर हो सकती है। जम्मू कश्मीर बखसूस वादी कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती, मुतनवा नबातात और साफ माहौल की वजह से शहद के मक्खियों की अफजाइश के लिए नहायत मौजू खिता माना जाता है। ज़रई माहरीन के मुताबिक मक्खियों की मौजूदगी से बागात की पैदावार में 20 से 30% तक इजाफा मुमकिन होता है। शहद की पैदावार के लिहाज से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि भारत भी अहम पैदा कुनंदगान में शुमार होता है। कश्मीर में सालाना हजारों मेट्रिक टन शहद पैदा किया जाता है और इस शोबे में रोजगार के वसी इम्कान मौजूद हैं। देही इलाकों में बेशुमार नौजवानों और शहद की मक्खियों की परवरिश को एक पायदार खुद रोजगार के तौर पर इख्तियार कर सकते हैं। कश्मीर का ऑर्गेनिक शहद अपनी खालिसियत, खुशबू और दवाओं जैसी खसूसियात के बायस बैन अवी मंडी में खास अहमियत रखता है। यूरोप और खलीजी ममालिक में ऑर्गेनिक शहद की मांग मुसलसल बढ़ रही है और अगर मुनासिब ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की जाए तो कश्मीर का शहद आलमी मंडी में कीमती जर मुबादला कमा सकता है। ताहम जरिए फसलों में कीड़े मार अद्वियात और स्प्रे का बेतहाशा इस्तेमाल शहद की मक्खियों की आबादी को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। माहरीन खबरदार करते हैं कि अगर यही सूरत हाल जारी रही तो न सिर्फ शहद की पैदावार मुतासर होगी बल्कि गजाई तहफ़ और माहौलाती तवाजुन भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि माहौल दोस्त ज़राअत को फरोग दिया जाए, किसानों में बेदारी पैदा की जाए और शहद की मक्खियों के तहफ़ के लिए मौसर इकदाम किए जाए। यही हमारी मईशत, ज़राअत और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है। तबसरा खत्म हुआ, शब खैर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्ट

जय हिंद। संगीत से भरा हुआ फौजी भाइयों का ये मनपसंद प्रोग्राम यानी फौजी भाइयों के लिए लेकर फिर से एक बार आपका दोस्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तमाम दोस्त

0: तुम और फौजी भाइयों को मेरा प्यार भरा आदाब। तो लीजिए दोस्तों, सुनते हैं प्रोग्राम की पहली पेशकश उदित नारायण की आवाज में।
1: वो तो
2: क्यूट है ना,
1: अरे पहलवान है।
2: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
2: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
2: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
3: होनी को तो कुछ भी हो सकता है।

जी दोस्तों, सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में प्रोग्राम का अगला नगमा मोहब्बतें फिल्म से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: फौजी भाइयों, आप अपना ये मनपसंद प्रोग्राम आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। प्रोग्राम अभी जारी है, पहले ये छोटा सा वक्फा।
1: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड नहीं आया है। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बगैर नंबर चाचे, अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्ड पर।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
2: करता हूँ।
3: RBI कहता है,
4: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दादा, कौन सा प्लांट है?
6: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
7: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
5: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
7: क्यों?
5: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
7: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
8: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
9: कूल रहो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: De repente este programa en Chigutpin y el Strums Magmimnifia. Midim Vivica Jasakashmani Kargilikan and Tanagragan Chigut, Waxpo Habaruni Tosonsuk, Casata Akashmani Dihlikana, Hindi, Angrezi, Dona Urdin, Habarun Rilevet, Rilevla Girbazat.
1: रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों रक्षा कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी अब समाचार विस्तार से भारत और इटली ने आज कृषि दुर्लभ खनिजों आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली ज्वाइंट

0: स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: सिर्फ यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

0: मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashwani and I am V.C. Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास

0: प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दो तरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगू मीशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खत्ते में जहाज रानी की आजादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our times, rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom on navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: वजीर आजम मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटरेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दो तरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वजीर आजम ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कु डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।

0: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के जिमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती ताउन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी शराकत दारी के माहिदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है। मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने तरमीम शुदा शहरियत के कानून या CAA के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क से बाहर निकालने की कार्रवाइयों को फौरी तौर से शुरू करने का ऐलान किया है। सरहद पर बाड़ लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन सौंपने की एक तकरीब के दौरान नबन्ना के मकाम पर खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि अब दरअंदाजों को बराह रास्त BSF के हवाले किया जाएगा। यहां से उन्हें मुल्क बदर करने की गरज से BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इस नई कार्रवाई को पता लगाना, हजफ करना और मुल्क बदर करना करार दिया। वजीर आला ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने पिछले साल 14 मई को रहनुमा खतूत जारी किए हैं जिनमें रियासतों को हिदायत दी गई है कि वह दरअंदाजों की शनाख्त करें और उन्हें BSF के हवाले करें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साबिका तृणमूल सरकार इन हिदायत को नाफिज करने में नाकाम रही। जनाब अधिकारी ने वाजे किया कि CAA के तहत तहफ्फुज फराहम करदा 7 बिरादरियों के अराकीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बशर्ते कि वो 31 दिसंबर 2024 से कबल भारत में दाखिल हुए हों। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आने वाले NEET UG इम्तिहान के महफूज बेहतर तरीके से और शफाफ तौर पर दोबारा इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त निगरानी और नकायद से पाक इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। जनाब प्रधान ने यह बात आज नई दिल्ली में मरकजी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ एक आला सतह जायजा मीटिंग के सदारत करते हुए कही। अंडर ग्रेजुएट तिबी तालीम में दाखिले के लिए NEET UG का दोबारा इम्तिहान 21 जून को मुनाकिद किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक केस में 5 मुलजिमीन को अगले महीने की 2 तारीख तक अदालती तहवील में भेज दिया है। इन मुलजिमीन में मांगी लाल खाटिक, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे शामिल हैं। अदालत ने एक दिगर मुलजिम शुभम खैरनार की CBI तहवील में तोसी कर दी है। CBI ने अपने रिमांड पेपर में कहा है कि खैरनार की मजीद तफ्तीश की जरूरत है ताकि उन दिगर मुलजिमीन की पहचान की जा सके और पता लगाया जा सके जिन्हें खैरनार ने NEET UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चे बेचे थे। पर्चा लीक होने के इल्जाम के दरमियान पिछले महीने की 3 तारीख को लिया गया NEET UG 2026 इम्तिहान मनसूख कर दिया गया था। इस मामले में हुई बेजाबतगियों की जामे जांच की जिम्मेदारी का काम CBI को सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस उजरदारी को खारिज कर दिया जिसमें आने वाली मरदमशुमारी के किस्से के तौर पर जात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने के मरकज के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के पॉलिसी के दायरे में आता है। अदालत उज़्मा ने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद कितनी है ताकि उनके लिए फलाही इकदाम किए जा सकें। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज सियोल में जनूबी कोरिया के दिफाई हसूलियाबी के प्रोग्राम के इंतजामिया के वजीर ली योंग चुल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मीटिंग के दौरान फरीकैन ने मुश्तरका फरोग, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका बरामदात के लिए बारावर कोशिशों को तेज करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के इख्तराई इको निजामों में ताउन करने के काइंड एक्स पहल के इम्कान को तलाश करने के लिए लाहे अमल वजा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मगरबी एशिया के तनाजे की वजह से गैर यकीनी के आलमी सूरतहाल के बावजूद अकवामे मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा साल के लिए भारत की शरह तरक्की का अंदाजा 6.4% लगाया है जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी मईशत बना रहेगा। अकवामे मुत्तहिदा के सीनियर माहिर माशियात

0: के लिए आए दिन से मिट्टी और पत्थर से बने हुए मकानों में रिहाइश अख्तियार करते आए हैं।
1: लद्दाखियों का रिवायती लिबास बहुत सादा और दीदा जेब है, मुकामी जोग्राफियाई हालात से मेल खाता है। लद्दाखी लोग अदब में मलबूसात का तफसीली जिक्र है, लेकिन यहाँ सिर्फ चंद का जिक्र किया जाता है।
0: सफेद ऊनी चोहा, गुंचा, शलवार नुमा ऊनी पैजामा, छख्तिन या स्नमिया या दुरमा, ऊनी स्केरक्स, कमरबंद, पट्टू या धागों के जूते, पापू या क्रतपा जो उमूमन खाम चमड़े के होते हैं, नमदे के सफ़ेद मोज़े, कंगफिंग जो टांगों पर टखनों से घुटनों तक लपेटे और सया ऊनी फीता फिंगतों के जरिए बांधे जाते हैं और जिसके किनारों पर रंग बरंग उमूमन सया धागे से सोजनकारी की जाती है। इस सिलसिले में अपने ख्यालात पेश करते हुए आप हैं आखुन मोहम्मद हसन बरू।
2: उस वक्त लिबास का ताल्लुक था, आम तौर लोग उन्हीं कपड़ा पहना जाता था, यहाँ पर लोकली बनाया जाता था उन्हीं कपड़े जिसको हम पट्टू कहते हैं, हमारे यहाँ के झूले उसको बनाते थे। तो ख़ास यहाँ का लिबास जो है उन्हीं चोगा, जिनको हम गुंचा कहते हैं, मर्दों के लिए हुआ करता था एक अलग डिज़ाइन से। आम तौर पर वो इस वक्त भी पहना जाता है गुंचा, लेकिन वो गुंचा नहीं जो पुराने ज़माने में पहना जाता था। इस वक्त तो उसमें और मॉडिफिकेशन लाए हैं, बहुत अच्छी तरह बनाते हैं। मर्दों के लिए गुंचा होता था और औरतों के लिए सुलमा या फिरन, अलग किस्म के ऊनी कपड़े होते थे। और आपको कहा जाए तो ख़ास एक बात, उस वक्त औरतों के लिए पाजामा, पाजामा का डिज़ाइन बहुत अजीब तरीके से था, जिसको हमारे लोकल जबान में दुचक्स कहा जाता है। वो एक पट्टू का एक लंबा चौड़ा पाजामा होता था और उसको पहनने के बाद घुटनों से नीचे उसमें कने चूड़ियां डालते थे और उस तरह वो मोटी बन जाती थी और सर्दी से अपने पैरों को और टांगों को औरतें बचा कर रखती थी। तो इसी तरह मर्द अपने टांगों को सर्दी से बचाने के लिए, यूँ तो हमारे चौड़े काफ़ी लंबा होता है, फिर भी अगर आमतौर पर टांगें जो हैं काफ़ी सर्दी लगती है टांगों को, तो उसको बचाने के लिए एक किस्म का ऊनी ही लिबास होता था जिसको हम फिंगमा कहते हैं। वो फिंगमा टांगों के इर्द गिर्द इस तरह बांधा जाता था, उसके ऊपर से पट्टी बांधकर उसको महफूज तरीके से रखा जाता था। और जूते जो है, उस वक्त पप्पू नाम का एक जूता हुआ करता था, क्रतपा हुआ करता था, क्रतपा के और पप्पू के अंदर उसको गर्म रखने के लिए भूसा डाला जाता था और भूसे के ऊपर फिर पैर को रखा जाता था। और ये पप्पू जो है हमारा यहाँ पर काफ़ी बर्फबारी होती थी, तो उस बर्फ पर चलने के लिए हमारा पप्पू जो है बहुत कारगर साबित हुआ है, क्योंकि जो बूट हैं या और किस्म के जो नए नए जूते हैं वो फिसल जाते हैं और ये पप्पू बर्फ पर फिसलते नहीं थे और आराम से लोग चल सकते थे और पैर को काफी गर्म रखते थे, महफूज रहता था, सर्दी से बचकर रहता था।
1: बेड की खाल, चरू, कंटोप, गोंडा या सियाह ऊनी टोपी या ऊनी पगड़ी, मस्कुरा मलबूसात नामालूम जमानों से राइज हैं। इनमें आज तक सिर्फ इतनी तरमीम है कि अब यही चीज़ें मुकामी पट्टू की बजाय मशीनी कपड़ों से तैयार की जाती हैं, जो गो देखने में खूबसूरत हैं लेकिन मुकामी मौसमी हालात से मेल नहीं खाते।
0: इस सिलसिले में अपने तासुरात पेश करते हुए आप हैं मास्टर मोहम्मद कासिम गोमा करगिल।
2: پہلے زمانے کے رہن سہن بارے میں اگر بتایا جائے تو ہمارے رہن سہن میں جو چینج آ گیا ہے وہ ہمارے یہاں کے ماحول اور ہمارے یہاں کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے

0: ये हमारे तमाम लोगों के लिए सूटेबल या मौजून नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो आबावा है उसके मुताबिक ही हमारे पुराने जमाने में पुराने लोगों ने जो खाने पीने या रहन सहन या लिबास का जो तरीका अपनाया था वो हमारे लिए अभी भी वही मौजून ही है। लेकिन बदकिस्मती से ये सारा चेंज हो गया, इसी के नतीजे में आज हम मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं, खुसूसन आम तौर से यही सर्दी की वजह से लगने वाली बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। पुराने ज़माने में बात ऐसी थी कि हम अपने ही घर के प्रोडक्ट जो पैदावार होते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, उनके ऊन से लिबास बनाते थे, जो हमारा प्रोडक्ट ज़मीन से हमें आ जाता था तो उसी के खाने जो है वो हम तैयार करके खाते थे, मसलन पापा थोपर सबकुर वगैरह। और आज साइंटिफिकली भी ये साबित हो चुका है कि हमारे यहाँ पर यही हमारे माहौल के मुताबिक, हमारे एनवायरनमेंट के मुताबिक, हमारे आबहवा के मुताबिक वही खानों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी सेहत को मेंटेन रख सकें।
1: लेह, करगिल और मुजाफात में अब तहजीब जदीद के जेर असर कोट, पतलून, जैकेट, बूट वगैरह पहनने का रिवाज हो चला है, जिसका असर देहात तक पहुंच रहा है, जहां ताहाल रिवायती लिबास पहनाया जाता है। यही सूरतहाल जनाना लिबास की है। जनाना चोगा सिया या गहरे सुर्ख रंग की पट्टू का बनाया जाता है और इसकी कमर तंग और तहदार सुलचक्स होती है, कालर बिल्कुल नहीं होते।
2: पुराने ज़माने में लद्दाख खास में अमीर घरानों की औरतें ज़रिफ़्ता या तवार चीनी गोशन के गुलदार चोगे पहनती थी। जनाना पैजामा दोरमा तंग और चूड़ीदार रदुचक्स होता था। जनाना पापू शोख रंग के मुनकश पट्टू से तैयार किए जाते थे, जबकि मर्दाना पापू सादा पट्टू के होते थे। अब ये चीजें शाज व नादिर ही दिखाई देते हैं। अब इनकी जगह मखमल, टेरिवूल वगैरह ने ले ली है।
1: इस बारे में सेवांग यांगडोल ने यूं कहा,
3: उस वक़्त अपने लद्दाख के क्लाइमेट के अनुसार, क्लाइमेट के कंडीशन को ध्यान में रखते हुए लोग बड़े सुंदर सुंदर पोशाक पहनाया जाते थे और एकदम पौष्टिक आहार जो गर्मी में भी सर्दियों में भी जो हमें गर्म आहार दे, हमारे पूरे बॉडी को ताकत दे, इस तरह का खाना खाया जाते थे। लद्दाख में दो मुख्य समुदाय होने के कारण जैसे बौद्ध और मुस्लिम, तो इन दोनों के लिबास में भी थोड़ा बहुत फर्क थे। जैसे कि बौद्ध मर्द आमतौर पर सिर पर गोंडा पहनाया जाते थे, कंटो पहनाया जाते थे जो सर्दियों में पूरी तरह से सिर को गर्म आहार दे, पट्टू के बांध बना के ऊपर से मगमाल का कवर लगा के अंदर से बेडू के छोटे बच्चे के खाल लगा के एकदम सुंदर तरीके से बनाया जाते थे। तो इसी तरह मुस्लिम मर्द उनका टोपी जो है एकदम सफ़ेद पट्टू के गोल गोल टोपी एक सुंदर टाइप का हुआ करते थे। तो इसी तरह ग्यागोंग नाम का एक गोंजा पहनाया जाते थे जो एकदम सफ़ेद बिना कलर लगाए पट्टू के पहनाया जाते थे और बाद में धीरे धीरे अभी जो गोंजा छुआ पहनते हैं फोगोस जिसे हम कहते हैं वो पहनने लगे। तो इसी तरह पैरों में आमतौर पर पप्पू और तत्पा पहनाया जाते थे। ये पप्पू और तत्पा भी एकदम जो याक के बाल का बनाया जाते थे, नीचे से क्वा कहते हैं खाल लगा के सुंदर तरीके से जो बुरी तरह से हमारे पैरों को गर्माहट दे, इस तरह का पप्पू और तत्पा पहनाया जाते थे। औरत जो है अपने अपने हैसियत के हिसाब से जैसे शादी ब्याह वगैरह में जाते वक़्त पैराक पंदाब दुनियू आदि पहनाया जाते थे और सर्दियों में ज़्यादातर कंटोप गोंडा टिपी किरकिर जिसे टक्की कहा जाते हैं इस तरह का पहनते थे। तो इसी तरह जो आज सुलचक्स पहनते थे वो पुराने ज़माने में भी पहनते हुए आ रहे थे। लेकिन ये सारा जो पोशाक जो है ये क्लाइमेट के हिसाब से पहनाया जाते थे, लेकिन आज हमें ये सब तकरीबन ख़त्म हुए जा रहे हैं।

0: हमारे सेहत, हमारे इकतेसाद कोई भी ठीक नहीं हो सकता।
1: सबखुर आमतौर पर नमकीन चाय मक्खन या सरसों तेल के साथ खाई जाती हैं। पुराने जमाने में मेहमान खुसूसी को मक्खन या सरसों के तेल के साथ सबखुर खिलाता था। ख्याल रहे, सर्दियों में ज्यादातर गोश्त और गर्मियों में साग, सब्जी, लस्सी, दही वगैरह पर जोर दिया जाता है। गोश्त मुकामी बेड़ू और बकरे से हासिल होता है।
2: गाहे माहे जंगली जानवरों मसलन कील, शपो, मुर्गाबी, कबूतर, चकोर, रामचकोर वगैरह का गोश्त भी मुहैया हो जाता है। मुस्लिम बरादरी में हमेशा ज़बह किया हुआ गोश्त इस्तेमाल होता है। बाकी लोग भी ज़बह किया हुआ गोश्त पसंद करते हैं।
1: मशरूबात में छंग, ग्रीम या जो की शराब मशहूर है। लद्दाखी रिवायात में चाय, छंग और दही का दौर खुशहाली की अलामत करार दिया गया है। तकरीबन हर बोधी घराने में कशीर की जाती है और बहुत मकबूल है। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी बहुत ज़ोग व शोक से पीते हैं। शादी ब्याह की तकरीबों, त्योहारों और ज़ियाफ़तों में छंग नागुज़ीर है।
2: लेकिन अब इसका इस्तेमाल भी बूढ़ी बस्तियों तक महदूद है। मुसलमान इससे परहेज करते हैं और शरअन हराम समझते हैं। बोधों में भी कुछ लोग खुसूसन मजहबी रहनुमा वगैरह इसे परहेज करते और दूसरों को भी परहेज करने की हिदायत करते हैं। छंग नशावर शराब है, लेकिन अंग्रेजी शराब की नस्बत नरम है।
1: छंग के बाद चाय का नंबर आता है। लद्दाखियों में चाय नोशी की आदत बहुत कदीम जमाने से चली आई है, जबकि चाय अमूमन तिब्बत लासा से दरामद की जाती थी। तिब्बती चाय ईंट चपक की शक्ल में होती है और हिंदुस्तानी चाय की निस्बत ज्यादा खुश जायका और कीमती होती है।
2: लद्दाख में चाय नवेशी की इब्तिदा कैसे हुई, इस बारे में ये रिवायत मशहूर है कि एक ज़माने में हुकूमत तिब्बत लद्दाख को सियासी और माशी तौर पर कमज़ोर बनाना चाहती थी। लद्दाख उस ज़माने में खुशहाल था। तिब्बतियों ने यहाँ चाय की बरामद शुरू कर दी। लद्दाखियों को जल्दी चाय का चस्का पड़ गया और रफ्ता रफ्ता इसी के हो रहे। अमीर, गरीब, आला, अतना सब चाय के आदि हो गए, जिसके नतीजे में वो इकतसादी तौर पर